0: जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ओलिव 106.3 FM।

Olive 106.3 FM Gio Bindas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

पुरंदर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग विद आरजे सुदेव, हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग, इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। These smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

आप सभी को एक सुपर डुपर गुड मॉर्निंग। स्टेशन क्लॉक में 6:10 हो रहे हैं, यानी कि 4 घंटे बैठेंगे, एक साथ करेंगे दिल खोल के बात, गुफ्तगू करेंगे, गाने सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे, ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताएंगे। तो भाई कुर्सी की बेटी बांध लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम भरने वाले हैं उड़ान। ये है बिंदास मॉर्निंग्स ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और हम यहाँ पे बातों का सिलसिला शुरू करने वाले हैं, मगर उसके पहले याद दिला दूं, अभी भी ये नया दिन है, नई शुरुआत है, तो एंजॉय करना है बढ़िया तरीके से। जो दिल में आया है वो हम कर पाएंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं कर पाए तो कोई गल नहीं जी, कोई गल नहीं, क्योंकि कभी कभी अगर मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा। और इसलिए मैं कहता हूँ चेहरे पे लाइए एक मुस्कुराहट और पूरे जोश के साथ, जज्बे के साथ इस दिन को जरा किक स्टार्ट करते हैं। और शो को किक स्टार्ट करने के लिए एक बहुत ही प्यारा सा गाना है मेरे पास, तो चलिए। तो दिलजीत पाजी की आवाज में सुनते हैं बॉर्न टू शाइन। मैं बता दूं आप सभी को कि ऑल ऑफ यू आर बॉर्न टू शाइन। तो शुरू करते हैं आज का, किक स्टार्ट करते हैं आज का बिंदास मॉर्निंग और कहते हैं जियो बिंदास। तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले अभी के अभी कर दीजिए मैसेज 3311106 पर। स्टे ट्यून्ड।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: बिंदास।
2: अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न। अरे यार हॉलीडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्ड एंड समर के साथ आइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो देयर इज मोर विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन द GCC। विजिट मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
0: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: हेलो नमस्कार मम्मा मिया मैं हूँ चंकी पांडे और आप सुन रहे हो मुझे रेडियो ओलिव पर।
4: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।
0: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक
5: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड। Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 6:23 होने वाले हैं और यहाँ पे हमारे पास थोड़े मैसेजेस आए हैं, एक एक करके देख लेते हैं। शशिकांत पाटिल जी का मैसेज आया है और उन्होंने लिखा है, स्टे ब्लेस्ड हैप्पी एंड हेल्थी गुड मॉर्निंग हैप्पी संडे करके। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। उसके साथ साथ मुझे संधू जी का मैसेज आया है। संधू जी ने लिखा है, गुड मॉर्निंग कतर, हैव अ ब्लेस्ड डे। हरपाल संधू फ्रॉम जिक्री दुकान जियो बिंदास। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। आपको भी काफी बढ़िया और बिंदास दिन हम विश करते हैं। भूपेंद्र पाजी का मैसेज आया है, लिखा है, गुड मॉर्निंग पाजी, सत श्री अकाल जी। और आपको भी पाजी सत श्री अकाल और गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपका दिन भी जो है काफी बढ़िया और मस्त जाए, बिंदास जाए। उसके साथ साथ मुझे अनिल जी ने मैसेज किया है गुड मॉर्निंग करके। आजाद जी का मैसेज आया है, उन्होंने मैसेज किया है, नेम इज आजाद अंसारी, गुड मॉर्निंग सुधीर सर, जियो बिंदास, आई लाइक योर वॉइस। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। दिल खुश कर दिया आपने, मेरे चेहरे पे जो है एक बहुत ही बड़ी मुस्कुराहट दे दी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी काफी बढ़िया और बिंदास दिन जाए मैं उम्मीद करता हूँ। थोड़ी देर में गानों के उस पार जब हम आएंगे तो फुटबॉल रिलेटेड एक सवाल लेकर आएंगे, तो तैयार हो जाइए मेरे सवाल के लिए। यहाँ पे हम प्ले करते हैं कूल सॉन्ग ऑफ द आवर और कहते हैं जियो बिंदास।
1: Awesome. रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। Awesome.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. Joy Alucas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alucas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alucas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alucas, world's favorite jeweler.
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड These smiles anytime. For more information, call 4411133.

0: आज बहुत काम है।
1: भी तो सुनो।
0: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है।
2: भाई पोल खोल दी थी इस गाने ने बहुत लोगों की।
0: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर मंडराती, सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं
1: चलती। तो
0: इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं?
2: अब देखो भाई, मैं उस टाइम पे बच गया था क्योंकि छोटा बच्चा था ना मैं। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई यहाँ पे सवाल पूछने का वक्त आ चुका है, तो चलिए शुरू करते हैं ब्लैक बोर्ड स्टोरीज को।
3: रेडियो ऑलिव प्रेजेंट्स ब्लैक बोर्ड स्टोरीज।
2: ब्लैकबोर्ड स्टोरीज में आज हम फीफा रिलेटेड एक सवाल पूछेंगे। तो हम जानते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप हिस्ट्री में सबसे सक्सेसफुल टीम जिसे माना जाता है वो है ब्राज़ील, जिन्होंने हर वर्ल्ड कप एडिशन के लिए क्वालिफाई किया है, 5 वर्ल्ड कप जीते भी हैं। तो मेरा सबसे प्यारा सा सवाल है, क्योंकि देखिए मैं तो एक ब्राज़ील फ़ैन हूँ, छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा, तो ये सवाल ब्राज़ील से रिलेटेड है। ब्राज़ील ने अपना पहला वर्ल्ड कप कब जीता था ये आपको बताना है, और फाइनल में किस टीम के साथ खेला था, कौन से साल में उन्होंने अपना वर्ल्ड कप जीता था सबसे पहला, और फाइनल में किस टीम के साथ खेला था ये आपको बताना है। 3311063 पर तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले अभी के अभी आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं यही हूं भाई। आयुष्मान की आवाज में सुनते हैं बहुत ही प्यारा गाना, यही हूं मैं। स्टे ट्यून्ड और कहते रहिए जियो बिंदास।
4: मैं खोया तो ढूंढ ना आया, चुपके से एक खाम में जाइयो।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। Hey, can I have your number?
1: Why not? लिखो 10, 20, 30.
0: अब पूरे कतर में यही गूंजेगा क्योंकि सफारी में स्टार्ट हो चुका है 10, 20, 30 जून 29 से।
1: आपके डेली एसेंशियल्स, ग्रोसरीज, बेकरी एंड हॉट फूड से लेकर फुटवेयर, बैग्स, ट्रेंडी फैशन आइटम्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी तक सब कुछ मिलेगा बिल्कुल आपके बजट में।
0: शॉप कीजिए और मेगा लकी ड्रॉ के जरिए 30 बेस्ट ट्यून कार्स जीतने का सुनहरा मौका पाए।
2: सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस दोहा कतर।
3: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
4: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
3: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
4: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
3: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
5: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
6: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।
5: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
7: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। These smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

जो तुझको देखा आसमां में चांद था नहीं, कहीं पे छुप गया के कहता लगता नहीं। इससे हसीन मैंने देखा कहीं कुछ के लोग यूं ही

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और भाई यहाँ पे जो है एक सवाल पूछा था मैंने, सवाल का जवाब जो है मेरे पास आया है। मुझे मैसेज किया है मोहम्मद महताब भाई ने, उन्होंने बोला गुड मॉर्निंग ब्रदर, 1958 स्वीडन ब्राजील वॉन 5-2 करके। ओके, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। उसके साथ साथ अर्ज भाई ने मैसेज किया, उन्होंने बोला गुड मॉर्निंग भाई, हैव अ मैग्निफिसेंट डे, ब्राजील वॉन देयर फर्स्ट वर्ल्ड कप इन 1958 फ्रॉम स्वीडन विद 5-2, आई एम अर्ज करके। थैंक यू सो मच जी। और मुझे दीपक जी ने भी यही मैसेज किया है और रुचिका जी का भी यही मैसेज आया है, यही आंसर आया है। तो बता दूं मैं कि भाई बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया, खुश कर दिया आपने मुझे, यही तो चाहिए मुझे। और मैं उम्मीद करता हूं कि छठा वर्ल्ड कप मिल जाए इस बार, जोसी में 6 स्टार्स लग जाए बस, यही हम चाहते हैं, होगा तो बढ़िया, नहीं तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं, एक गाना प्ले करते हैं, आंखों में तेरा ही चेहरा, आर्यंस का गाना है ये, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक है, इसे एंजॉय करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं. यहाँ हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है. यहाँ हर चोट एक मेडल है. हारना मना है और डरना गुनाह है. यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं दिलों की धड़कन शोर करती है. और ऑडियंस चीयर नहीं रोर करती है. बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम इट्स एन इमोशन. फीफा की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ओलिव
1: इन एसोसिएशन विद.
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स.
2: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर.

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग विद आरजे सुदेव, हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। Healthy smiles anytime. For more information, call 4411133.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई चलिए मौसम का हाल देख लेते हैं, ये जानते हैं कि क्या मौसम मौसमिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। धीरे धीरे गर्मी जो है बढ़ रही है, ह्यूमिडिटी भी बढ़ रही है और अभी का जो टेम्परेचर हमें देखने को मिल रहा है वो है 34 डिग्री सेल्सियस और काफी सनी डे दिखाया जा रहा है। और उसके साथ साथ हवा जो है 11 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बह रही है और मेरे मन में सवाल नहीं रिक्वेस्ट है कि प्लीज थोड़ा ठंडा कर दो हमें, ठंडी तरीके से आप बहोगे तो बहुत मजा आ जाएगा। उसके साथ साथ यहां का हाईएस्ट टेम्परेचर आज जाएगा 46 डिग्री सेल्सियस, लोवेस्ट जाएगा 34 डिग्री सेल्सियस। और यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ना चाहेंगे, मगर यार जरा मुझे नज़ारे दिखाइए आसपास के, बताइए कैसा है बाहर, कैसा लग रहा है। कुछ अच्छे अच्छे नज़ारे मुझे फोटो खींच के भेज दीजिए 3311063 पर, तत्काल प्रभाव से, तुरंत से, पहले अभी के अभी। फिलहाल यहाँ पे पति पत्नी और वो दो मूवी का गाना सुनते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
2: Joy Alucas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alucas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alucas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alucas, world's favorite jeweler.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव पे।
5: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
3: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
1: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड। These smiles anytime. For more information, call 4411133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 7:15 हो रहे हैं और यहाँ पे भाई मुझे मैसेज आया है सामी भाई का। उन्होंने मुझे एक फोटो भेजा है, बहुत ही प्यारा फोटो है। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। और उसके साथ साथ उन्होंने मैसेज लिखा है, अस्सलाम वालेकुम सुदेव भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम भाई, सब बढ़िया है, सब बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। आप बताइए कैसा चल रहा है, मैंने पूछा था तो उन्होंने मैसेज किया था। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और नाज़नी जी का मैसेज आया आज, बहुत लेट हो गया वैसे नाज़नी जी का मैसेज, यूजुअली बहुत जल्दी आ जाता है। तो उन्होंने लिखा है, गुड मॉर्निंग, टुडे आई विश यू नथिंग बट पीस लव एंड लॉट्स ऑफ लाफ्टर, हैव अ ग्रेट वन करके। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। अभी फिलहाल यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं, जबरदस्त हिट प्ले करते हैं। गानों के उस पार जब हम आएंगे तो फिटनेस के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम बताएंगे, तो तैयार हो जाइए।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है, जबरदस्त है।

0: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
1: Hey, can I have your number?
2: Why not? Likho 10, 20, 30.
1: अब पूरे कतर में यही गूंजेगा क्योंकि सफारी में स्टार्ट हो चुका है 10, 20, 30 जून 29 से।
2: आपके डेली एसेंशियल्स, ग्रोसरीज, बेकरी एंड हॉट फूड से लेकर फुटवेयर, बैग्स, ट्रेंडी फैशन आइटम्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी तक सब कुछ मिलेगा बिल्कुल आपके बजट में।
1: शॉप कीजिए और मेगा लकी ड्रॉ के जरिए 30 बेस्ट ट्यून कार्स जीतने का सुनहरा मौका पाए। सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस दोहा कतर।
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।
4: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक
5: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई यहाँ पे चलिए फिटनेस के बारे में बात करते हैं। एक बहुत ही बड़ा रिश्ता जो है मैं आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पे, तो तैयार हो जाइए।
1: फिट है तो हिट है,
0: तो भाई आज फिट है तो हिट है में हम बात करने वाले हैं ओरल हेल्थ और हार्ट हेल्थ के बीच में कोई ताल्लुक है क्या, कोई संबंध है क्या, ये जानने के लिए। रिसर्च ये दिखाती है कि गम डिसीसेस जो हैं और कार्डियोवास्कुलर डिसीसेस के बीच में एसोसिएशन देखा गया है, ताल्लुक देखा गया है। साइंटिस्ट का मानना है कि जब गम्स में लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन होता है तो इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स और बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर सकते हैं जो ओवरऑल इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। क्रॉनिक गम डिसीज वाले लोगों में हार्ट डिसीज का रिस्क ज्यादा रहता है देखा गया है। स्ट्रोक का भी रिस्क जो है हायर हो सकता है। ब्लड वेसल्स हेल्थ पर नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, एसोसिएशन का मतलब डायरेक्ट कॉज नहीं होता। रिसर्च ने दोनों कंडीशंस के बीच का लिंक ऑब्जर्व किया है, लेकिन ये प्रूव नहीं हुआ कि गम डिसीज से डायरेक्टली हार्ट डिसीज का जो है वो रास्ता बन सकता है। दोनों पर कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे कि डायबिटीज़ हैं, पोअर लाइफस्टाइल हैं, और ये भी असर डाल सकते हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स जो है रिकमेंड करते हैं दिन में 2 बार ब्रशिंग, डेली फ्लॉसिंग या इंटरडेंटल क्लीनिंग, रेगुलर डेंटल चेकअप्स और गम ब्लीडिंग को इग्नोर ना करना। और यही बात बताते हुए हम भी ज़रा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। बाय फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
4: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। Healthy smiles anytime. For more information, call 4411133.

शॉपिंग मॉल्स और हाइपरमार्केट्स ने ट्रैवल बैग्स, बीच चेयर, कूलर्स, स्विमवेयर, कैंपिंग गियर और सनस्क्रीन जैसे सीजनल प्रोडक्ट्स पर स्पेशल प्रमोशंस और डिस्काउंट्स भी शुरू किए हैं। और 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्मी के चलते सनस्क्रीन, टैनिंग ऑयल, रीयूजेबल वाटर बॉटल और लगेज और बैकपैक की सेल्स में भी हमें जो है काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली है। उसके साथ साथ ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड भी जो है काफ़ी बढ़िया तरीके से चल चुका है। कस्टमर्स जो है अब वेबसाइट्स पर और साथ साथ ऐप्स पर प्राइस कंपेयर करके ये देख के शॉपिंग कर रहे हैं कि भाई कहाँ पे अच्छा दाम मिल रहा है। इससे ई कॉमर्स और होम डिलीवरी सर्विसेज भी जो हैं इस टाइम पे और पॉपुलर हो गई हैं। और जुलाई अगस्त में जो है और ज़्यादा ग्रोथ की उम्मीद की गई है, फोरकास्ट की गई है। रिटेलर्स को उम्मीद है कि स्कूल हॉलीडेज, समर ट्रैवल और अट्रैक्टिव ऑफर्स की वजह से जुलाई और अगस्त में भी शॉपिंग का ट्रेंड जो है स्ट्रांग रहेगा। ये देखते हैं ये ट्रेंड कैसा रहेगा। वैसे काफ़ी अच्छा एक देखा गया है यहाँ पे टर्नआउट जो है इस ट्रेंड में। फिलहाल यही बात बताते हुए, ऑब्जर्वेशन शेयर करते हुए हम भी ज़रा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।
1: बिंदास।
2: अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न।
3: अरे यार हॉलीडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। फिर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्ड एंड समर के साथ पाइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस। प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो देयर इज मोर। विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन द जीसीसी। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
0: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहां हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहां हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहां सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम इट्स एन इमोशन। फीफा की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ओलिव
4: इन एसोसिएशन विद।
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
5: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर।
6: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
7: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
6: जीतने के चार रास्ते। पहला अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
7: दूसरा अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
6: तीसरा नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
0: डॉक्टर ऑन एयर। डॉक्टर ऑन एयर ब्रॉट टू यू बाय नसीम हेल्थ केयर।
8: Hi, I'm Dr. Sara Ali from Nasim Medical Center Al Khor. Do you know the best time to take different types of vitamins? Let's divide into two groups. First group, fat-soluble vitamin. This includes vitamin D, A, and E. It's better if you take it with fatty meal for better absorption. Second group, it's water-soluble vitamin, vitamin C and B12. Better if you take it first thing in the morning with plenty of water for better absorption.
0: Dr. On Air. Dr. On Air. Brought to you by Nasim Healthcare.

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग विद आरजे सुदेव, हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: CB2026 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Hi everyone, this is Benny Deol here. Olive Radio 106.3. Jio Bindas.
4: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.
5: Radio Olive, I'm in number one.
6: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के.
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
7: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड. These smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: अरिजीत सिंह और लेजेंडरी तुलसी कुमार की आवाज में सुना हमने गाना। आप सुन रहे हो रेडियो ओलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में अभी 8:16 हो रहे हैं और यहाँ पे भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है फुटबॉल के बारे में हम बात करना चाहेंगे। बहुत ही लोग जो है खुश होंगे क्योंकि सच बताऊं इस बार बात करने से पहले मुझे कैबो वर्दे के बारे में तो बोलना ही पड़ेगा। भाई क्या बढ़िया परफॉर्मेंस दिया उन्होंने। मतलब 2 मिनट के लिए अर्जेंटीना को लगा कि शायद हाथ से निकल सकता है। ऑल दो दिन हो चुके हैं उस मैच के, मगर फिर भी अभी भी वो मैच जो है हमारे जहन से निकला नहीं है। तो चलिए बात करते हैं उस खेल के बारे में जो है ब्लॉकबस्टर।
1: ये खेल है ब्लॉकबस्टर।
2: In association with
3: Download the City Exchange mobile app now to send money quickly at the best exchange rates.
4: Also, Palm Swiss Gold Bars are now available at the best price at City Exchange,
3: your trusted remittance partner.
0: तो भाई यहाँ पे चलिए बात करते हैं। कनाडा वर्सेस मोरक्को का मैच हुआ था, कल हुआ था ये मैच, और जिसमें 3-0 से कनाडा को जो है मोरक्को ने हरा दिया है। और अब थर्सडे मैच होगा फ्रांस वर्सेस मोरक्को, जो क्वार्टर फाइनल्स होगा। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो पैराग्वे फ्रांस में 1-0 से फ्रांस ने जो है मैच जीत लिया था, इसलिए वो क्वार्टर फाइनल्स की ओर आगे बढ़ चुके हैं। और काफ़ी बढ़िया मैच था यार, मतलब मानना पड़ेगा। इवन पैराग्वे फ्रांस में बहुत फाउल किया गया फ्रांस के ऊपर, और थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो गया था मैच क्योंकि फुल टाइम के बाद प्लेयर्स ने हाथ नहीं मिलाया। देवर लाइक कि भाई तुम इतना रफ क्यों खेल रहे हो, इतना एग्रेसिव क्यों खेल रहे हो, वैसा एक सीन हो चुका था। और उसके साथ साथ जो है और एक मैच जो होने वाला है और आने वाला है, यूएसए बेल्जियम मैच, वो ट्यूसडे 3 बजे है। 3 बजे तो बहुत टाइम है, मगर देखते हैं उसमें से कौन जीतेगा। आई थिंक बेल्जियम माइट टेक लीड। और आज जिस मैच के लिए हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो है पोर्चुगल वर्सेस स्पेन। भाई ये एक तगड़ा मैचअप हो सकता है। और उसके साथ साथ आज के बाकी मैचेस के बारे में भी हम बात करेंगे और पोर्चुगल वर्सेस स्पेन के बारे में भी बात करेंगे थोड़ा डिटेल में। अभी फिलहाल यहाँ पे एक काम करते हैं, कूल सॉन्ग ऑफ द आवर सुनते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
2: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: Kolkata's number one radio station, Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindaas.
1: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे
2: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन रूटीन केयर ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है कॉल 4411133 ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के
4: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद
2: नसीम हेल्थ केयर नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम फॉर मोर इन्फॉर्मेशन Call 4411133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और भाई, स्टेशन क्लॉक में 8:30 होने वाले हैं और यहाँ पे हम जरा बात करते हैं आज होने वाले एक बहुत ही बढ़िया मैच के बारे में, जो है पोर्चुगल वर्सेस स्पेन। देखिए, दोनों टीमें जो है टक्कर की टीमें हैं, दोनों टीम में काफ़ी अच्छा टैलेंट है। स्पेन में काफ़ी यंग टैलेंट है और एक्सपीरियंस टैलेंट है, पोर्चुगल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। मगर देखिए, क्रूशल मैच है, नॉकआउट मैच है, यहाँ से जो हार गया वो वापस घर चला जाएगा। और हम चाहते हैं कि भाई थोड़ा आगे बढ़ जाए पोर्चुगल, थोड़ा उन्हें भी मिलना चाहिए मौका, है ना। तो मैं चाहता हूँ जीते पोर्चुगल, मगर जिस तरीके से मैचअप लग रहा है, आई थिंक स्पेन माइट यू नो मूव फॉरवर्ड। और उसके साथ साथ आज एक और मैच है जो है ब्राज़ील और नॉर्वे के बीच में। सच बताऊँ, दिल मेरा धक धक करने लगा ये देख के। देखिए, नॉर्वे बहुत अच्छी टीम है, स्पेशली उनका जो स्ट्राइकर है अर्लिंग हालैंड, बहुत ही बढ़िया, एक वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर है और गेम अपने बलबूते पे में भी वो पलट सकते हैं, ऐसे एक प्लेयर हैं। उनका एक करिश्मा जो है वैसा है। और मे भी अगर ब्राज़ील ने देख के नहीं खेला या फिर थोड़ा कहीं से भी लूज छोड़ दिया तो फिर शायद चीज़ें उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। बट मैं चाहूँगा कि ब्राज़ील जीते, आगे बढ़े। और यही बात बोलते हुए हम भी ज़रा आगे बढ़ते हैं और गाना प्ले करने से पहले,
1: ये खेल है। ब्लॉकबस्टर। In association with... Download the City Exchange mobile app now to send money quickly at the best exchange rates.
2: Also, Palm Swiss Gold Bars are now available at the best price at City Exchange.
1: Your trusted remittance partner.
0: आप बताइए, आपके हिसाब से आज कौन-कौन जीत सकता है पोर्चुगल स्पेन में? आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? आपके हिसाब से कौन जीत सकता है ब्राज़ील और नॉर्वे में? आपके हिसाब से कौन जीत सकता है? मुझे मैसेज कीजिए 3311063 पर। तो देखते हैं आज कौन जीतेगा यहाँ पे। फिलहाल अली जफर की आवाज में टोटल सियापा मूवी का बहुत ही प्यारा गाना है ये गाना सुनते हैं, एक साथ बैठकर एंजॉय करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: रिंग फॉर द न्यूली मैरिड क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न।
2: अरे यार हॉलीडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। तो फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्ड एंड समर के साथ आइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो देयर इज मोर। With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।
3: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक
5: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड। Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। यार मैं ना एक चीज पूछना चाहता हूँ, ठीक है। अभी एक टाइम होता था जब मैं सुबह उठ के ऐसे म्यूजिक चलाता था, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनने की कोशिश करता था, तो उस टाइम पे मोस्टली मेरे फीड में, मेरे यूट्यूब के फीड में AI जनरेटेड जो सॉन्ग्स होते हैं ना, जो क्रिएटर्स होते हैं जो AI का यूज करके ऐसे BGMs बनाते हैं, वो आते थे। तो काफ़ी अच्छा लगता था मुझे, मैं सुनता था थोड़ा ऐसे बैठ के आराम से, ध्यान से, थोड़ा माइंड वे से काम हो जाता था। मगर मैंने एक पैटर्न नोटिस किया है, वो ये है कि मे भी शायद अभी जो AI हम यूज कर रहे हैं उसका लिमिटेशन हो सकता है आने वाले सालों में थोड़ा और बदल जाए, बट एक पॉइंट से ज़्यादा ना सुना नहीं जाता, या फिर एक पॉइंट से ज़्यादा वो सुनने का मन नहीं करता, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो द रीज़न। और मैंने कई बार ये भी देखा है कि जब भी कोई AI रिलेटेड सॉन्ग आता था, एकदम से हमें पता चल जाता है, AI जनरेटेड सॉन्ग आता तो एकदम से पता भी चल जाता है, अरे ये तो AI जनरेटेड है। मे भी जो वोकल्स यूज़ होते हैं बहुत ही सिमिलर हैं, कॉमन हैं, एक दो या फिर तीन चार आवाज़ें हैं जो हम बार बार सुन चुके हैं, और जो स्टाइल होता है उसका वो भी हम ऐसे पकड़ने लग गए हैं। तो मैं ये बैठ के ऐसे कॉन्टम्प्लेट कर रहा था और मैंने सोचा कि जो बंदा सही में जिसने म्यूज़िक सीखा है या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखा है वो बैठ के जब बजाता है तो क्या फीलिंग आती है। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। तो मैं देख रहा था एक वीडियो, उस वीडियो में एक साहब जो हैं वो सितार बजा रहे थे, और मैं वो वीडियो देख रहा था, वो सितार बजा रहे थे, मैं वो सुन भी रहा था, और जब मैं देख रहा था तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि यार ऐसा क्यों लग रहा है कि ये इंसान जो है उन सुरों से, उन नोट के साथ जो है एक वार्तालाप कर रहा है, एक बातचीत कर रहा है, और वो बातचीत हम विटनेस कर रहे हैं, और उस बातचीत में एक अलग मिठास थी, एक अलग इंटीमेसी थी जो विटनेस कर पाने के लिए बहुत ही हमें, मतलब वो बहुत ग्रेटफुल फील होता है ना कि वाह यार क्या बात करिए। मे भी ये जो एक कॉन्वर्जेशन उस इंस्ट्रूमेंट प्लेयर और उस इंस्ट्रूमेंट के बीच में हुआ, वो एक AI जनरेटेड सॉन्ग में हम नहीं फील कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे इमोशन नाम की एक चीज़ होती है, वहाँ पे एक और चीज़ होती है जहाँ पे एक बंदा अपने स्टेट ऑफ माइंड के साथ आता है। तो जितना भी हम टेक्नोलॉजी यूज़ करके चीज़ों को रेप्लिकेट करने की कोशिश करें, जब तक उसमें ह्यूमन एलिमेंट नहीं आता, जब तक उसमें इंसानियत नहीं आती, उस चीज़ में एक पॉइंट के आगे हमें जेन्युइनिटी नहीं दिखेगी। ये मेरा मानना है, आपको क्या लगता है आप बताइए अपने ओपिनियंस जरा मुझे 3311063 पर आप मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये मैं म्यूज़िक थोड़ा ध्यान देता हूँ, म्यूज़िक के ऊपर

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास इस खेल में प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहाँ हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहाँ हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। FIFA की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ओलिव
1: इन एसोसिएशन विद
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स
2: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर।
3: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
4: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
3: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
4: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
3: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग विद आरजे सुदेव, हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 9:06 हो रहे हैं और यहां पे चलिए बढ़ते हैं टेक जोन की ओर। तो भाई, एप्पल के एक एनालिस्ट ने बताया है कि आईफोन 18 और आईफोन 18 ई में रैम 8 GB से बढ़कर 9 GB हो जाएगी, ताकि एप्पल इंटेलिजेंस फीचर्स जो है ज्यादा स्मूथली रन कर सके। लेकिन iOS 27 के कुछ एडवांस्ड फीचर्स, स्पेशली सिरी वॉइस कस्टमाइजेशन और इम्प्रूव्ड स्पीच टू टेक्स्ट डिक्टेशन, सिर्फ 12 GB रैम वाले डिवाइसेस पर ही अवेलेबल होंगे। इसलिए ये दो फीचर्स जो हैं iPhone 18 और iPhone 18 ई में नहीं मिलेंगे। अब एक्सपेक्टेड रैम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जो आईफोन 17 ई और 17 था उसमें 8 GB था, और iPhone 17 Pro और Pro Max में 12 GB रैम था। iPhone 18 ई और 18 में 9 GB रैम होगा, और iPhone 18 Pro और Pro Max और Ultra में 12 GB होगा, और सेकेंड जनरेशन iPhone Air मोस्ट लाइकली 12 GB रैम हो सकता है, अभी कन्फर्मेशन नहीं आया है। और लॉन्च टाइमलाइन के बारे में अगर हम बात करें तो सितंबर में iPhone 18 Pro, Pro Max और फोल्डेबल iPhone Ultra जो है लॉन्च होगा, लेकिन बेस मॉडल iPhone 18, iPhone 18 ई और सेकेंड जनरेशन iPhone Air जो है मार्च 2027 में ही लॉन्च होंगे। रैम और नैंड चिप शॉर्टेज की वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है, और एनालिस्ट का ये भी मानना है कि iPhone 18 और iPhone 18 ई के प्राइसेस जो है $100 to $200 तक बढ़ सकती है कंपेयर टू दी iPhone 17 सीरीज। ओके गाइस, तो देखते हैं क्या होता है इस बार। फिलहाल यहाँ पे राघव चैतन्य और जनता गांधी की आवाज में सुनते हैं चांद मेरा दिल मूवी का एक गाना। Stay tuned, ये रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

0: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
1: हाय गाइस, दिस इज अपार्थ शक्ति खुराना और आप मुझे सुन रहे हो रेडियो ओलंपिक।

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
1: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
2: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। Healthy smiles anytime. For more information, call 4411133.

0: भाई काफी पॉजिटिव ऑन द रोड वाली फीलिंग है इस गाने में, मजा आता है गाना सुन के। ऐसा लगता है कि हाँ एक गाड़ी चल रही है, कन्वर्टेबल गाड़ी है, हवा ऐसे बह रही है, ठंडी हवा, ठीक है गर्म हवा नहीं, ठंडी हवा ऐसे बह रही है और हम बिल्कुल मस्त तरीके से गा रहे हैं कि दीवाना मैच चला। वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई स्टेशन क्लॉक में 9:19 हो रहे हैं और यहाँ पे जो है मुझे एक मैसेज आया था रॉय भाई का, उन्होंने बोला कि गुड मॉर्निंग सुदेव भाई, ब्राजील वर्सेस नॉर्वे का मैच है आज, कल है पोर्चुगल वर्सेस स्पेन। तो ये एक छोटा सा मिस्टेक मेरे से हो गया था, मैंने गलती से आज ही बोल दिया पोर्चुगल और स्पेन का भी आज नहीं था, सॉरी, थैंक यू सो मच रॉय भाई ये पॉइंट आउट करने के लिए। तो मैंने उन्हें मैसेज किया था, थैंक्स भाई, मैंने शायद गलत पढ़ लिया। तो वो ये कोई नहीं, बड़े बड़े शहर में ऐसी छोटी छोटी गलतियां जो है होती रहती हैं करके। वाह भाई एसआर के फैन, उससे एसआर की से याद आया मुझे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक रील देखा था जहाँ पे एक इंटरव्यू में तापसी पन्नू से पूछते हैं कि आप एसआर के बर्थडे में जब जाते हैं तो गिफ्ट कुछ देते हैं तो क्या देते हैं। तो तापसी पन्नू बोले कि भाई एसआर के को क्या ही गिफ्ट देंगे हम, मतलब उस इंसान को किस चीज़ की कमी है कि चलो मैं दे दूंगी करके क्या गिफ्ट दे सकते हैं। तो बोले खाली हाथ चले गए, फिर बोला हाँ ऑब्वियसली खाली हाथ चले गए, मैं क्या ही दे सकती हूँ एसआरके को। मगर मैं पूछना चाहूंगा आपसे, अगर आपको मौका मिलता है शाहरुख खान को कुछ गिफ्ट करने का, ठीक है, तो आप क्या गिफ्ट करोगे? चलो ठीक है यार वो भी छोड़ देते हैं, थोड़ा इसको टू पार्ट क्वेश्चन बना देते हैं। पहला पार्ट ये है कि अगर आपको मौका मिलता है शाहरुख खान को कुछ गिफ्ट करने का तो आप क्या गिफ्ट करते। दूसरा, और आपको मौका मिलता है शाहरुख खान से कोई गिफ्ट मांगने का तो आप क्या गिफ्ट मांगते, बताइए जरा मुझे 3311063 पर मैसेज करके। और यही बात बोलते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं, जबरदस्त हिट सुनते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

0: Listening to Radio Olive 106.3 FM. Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के
0: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
2: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड Healthy smiles anytime. For more information, call 4411133.

मुंबई मैचनी का गाना है ये शाश्वती की आवाज में। अब देखिए हमारे स्टूडियो में ऐसे दो लोग बैठे हैं जिनको देख के लोग यही बोलेंगे कि भाई लुट गए।

0: इंदौर से लेके भोपाल तक लड़के कतार में खड़े हैं और यही बोल रहे हैं कि लुट गए लुट गए लुट गए। किस कारण? ये दो कारण हमारे पास आज जो है स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेश। और एकदम से स्टूडियो की खूबसूरती बहुत बढ़ गई, ऐसा लगता है कि अब रिनोवेशन की जरूरत नहीं होगी। बहुत बढ़िया तरीके से जो है चार चांद चमक रहे हैं मेरे सामने। तनिषा मैडम, कशिश मैडम,
1: दो
0: हैं,
2: दो चांद कहते हैं, अच्छा पर पर्सन दो चांद,
0: आपकी आंखें चांद जैसी हैं तो दो दो चार थोड़ा ज्यादा हो गया इस बार।
1: बहुत ज्यादा हो गया,
0: बहुत ज्यादा हो गया, सॉरी सॉरी, मैं कम कर दूं। ठीक है, पता नहीं क्यों यार ये लोग आ गए यहाँ पे,
1: जाए
0: बैठो ना बैठो, अब आए हाँ तो आए तो थोड़ी बातें कर लेते हैं। तनिषा मैडम पंजाबी गल करते थोड़ी। तुसी कीवे हो?
1: कीवे कीवे इज नॉट राइट।
0: क्या है फिर?
1: किदा जी,
0: अच्छा कीवे हो भी है वो भाई, मैं देख रहा हूँ सुबह से लेके YouTube में यही देख रहा हूँ मैं। ठीक है, गलत मत बोलो।
1: पंजाबी क्यों सीख रहे तू?
0: मैं वो चंडीगढ़ में, मैं ना मुझे ना एक लड़की मिली
2: पंजाबी बैडी पसंद आ गई,
0: 10/10 पछोला पंजाबी है, तो सोच रहा हूँ कि मैं बोलूं।
2: यस, एक कुड़ी जी दा नाम मोहब्बत गुम है।
0: गुम है, गुम है,
2: गुम है,
0: हाँ उससे फिर मैं बोलूंगा आज दिन चढ़ेगा तेरे रंग वरगा। ओजी की ओर जाऊंगा, नुसरत साहब का गाना गाऊंगा, सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना, दिल्ली दम कमला डुब डुब जावे सजना तेरे बिना, या फिर अखियां उड़ीक दिया।
1: मैड, कम टू द पॉइंट।
0: हाँ पॉइंट पर आते हैं, दुनिया जहां की बातें कर ली पॉइंट पर नहीं आए, चलो ठीक है पॉइंट पर आते हैं। देखिए थोड़ी देर पहले मैंने एक सवाल पूछा था ऐसे ही, ठीक है, कि शाहरुख खान को क्या गिफ्ट दे सकते हैं। तो तापसी पर उन्होंने एक इंटरव्यू में उससे पूछा कि शाहरुख खान के बर्थडे में क्या गिफ्ट देते हो, तो बोली भाई शाहरुख खान को मैं क्या गिफ्ट दूंगी।
1: एग्जैक्टली,
0: ठीक है, मगर फिर भी हम हाइपोथेटिकली देखते हैं कि चलो भाई शाहरुख खान को गिफ्ट की जरूरत है और आपके पास मौका है शाहरुख खान को गिफ्ट देने का, तो आप क्या दोगे? तनिषा मैडम आप बताइए पहले।
1: शाहरुख खान को मैं मेरा वक्त दूंगी, इससे ज्यादा कीमती क्या हो सकता है।
0: गाइस माइक ऑफ करने का वक्त आ चुका है और तनिषा का माइक ऑफ। वक्त दोगे? दूसरा पार्ट भी है इस क्वेश्चन का, शाहरुख खान से अगर कोई गिफ्ट लेना है तो क्या लोगे? गौरी जी थोड़ा
1: तो फिर थोड़ा सा पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा लूंगी।
0: अच्छा अच्छा, बस पैसे चाहिए आपको?
1: हाँ, बाकी आई विल मैनेज।
0: ठीक है ठीक है ठीक है, अब कशिश मैडम आप बताइए।
2: मैं उन्हें बहू दे सकती हूँ।
0: अच्छा
2: यस, और उनसे बदले में उनकी पूरी जायदाद ले सकती हूँ, सो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है खान खानदान की बहू बनने में, सो कोई बात
1: नहीं है,
2: मैं आराम से काम चला लूंगी, कोई बात नहीं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। दो मिनट के लिए मैं सोचा कि वाह यार, मतलब ये तो काफी बड़ी चीज उन्होंने ऑफर भी की है, और ऐसा नहीं छोटी मोटी चीज है। मगर हमारे पास एक मैसेज भी आया है उसामा भाई का, वो भी जरा सुन लेते हैं।
3: गुड मॉर्निंग रेडियो ऑलिव, मेरा नाम उसामा है।
0: Morning.
3: अगर मुझे कोई मौका मिले शाहरुख खान को कोई गिफ्ट करने के लिए, तो मैं अपनी बाइक उसको दे दूंगा।
0: अच्छा।
3: कि काफी बेचारा ट्रैफिक में अटकता है हमेशा, जब भी जाता है घर से निकलता है तो, और मुझे कुछ मांगने के दिल करेगा तो मैं उससे उसकी बेंटली मांगूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा आउटसाइड मुंबई में रहता हूँ तो मेरे लिए ट्रैफिक थोड़ा कम रहता है, तो मैं बेंटली में घूमूंगा और मेरी बाइक उसको दे दूंगा।
0: वाह भाई वाह, ये जो आपने बेंटली और बाइक का जो ट्रांसफर करने का बात किया है, मतलब
1: स्मार्ट,
0: बहुत स्मार्ट मूव, बहुत कैजुअल तरीके से आपने बोल दिया, और मुझे लगता है कि शायद शाहरुख मान भी सकता है। देखिए यू नेवर नो राइट। अब मैं अगर अपने बारे में बताऊं, अगर मुझे मौका मिला शाहरुख खान को कुछ गिफ्ट देने का, तो आई हैव वन थिंग विद मी। जब मैं छोटा था तो मैंने एक छोटी सी डायरी बनाई थी, जिसमें शाहरुख खान के बचपन के फोटोज जो ऐसे न्यूज़पेपर में कटिंग्स आते थे ना, वो मैंने कट करके ऐसे डायरी में रखे थे। तो मैं वो डायरी जो मैंने बनाई थी उसमें बहुत सारे कोट्स भी ऐसे मैंने लिखे हुए थे ऐसे ये सब, तो इट्स अ पर्सनल गिफ्ट, मैं वो देना चाहूंगा। लेने के लिए तो भाई मन्नत, पूरा मन्नत चाहिए मुझे, विद थिएटर गेमिंग स्टूडियो सब भाई, पूरा का पूरा। और मैं बोल दूंगा कि आप रेंट फ्री रह सकते हो।
2: हाँ कोई बात नहीं, आप रह लो, हम हमारा दिल इतना बड़ा तो है। अरे एक
0: दिल्ली वाले लोग हैं हम, थोड़ा
1: एक आधा कमरा तो इट्स ओके।
0: नहीं नहीं भाई मैं कह रहा हूँ नैरो यार,
2: आप रह लो, हम वैसे भी किराए पे चढ़ाया हुआ है, कोई बात नहीं, आना जाना रहेगा, कोई बात
0: नहीं। बट जोक्स अपार्ट, वन थिंग दैट आई वुड लव टू डू, जो मुझे लगता है शायद AIB वाले भी नहीं कर पाए, करेगी नहीं पता नहीं, आई वुड लव टू हैव अ फीफा सेशन विद हिम। फीफा खेलना चाहूंगा मैं।
1: दे डिड नो, दे प्लेड नो, रणबीर के साथ खेला था,
0: रणबीर के साथ खेला था, शाहरुख के साथ,
1: आई थिंक शाहरुख के साथ भी खेला है,
2: शाहरुख के साथ खेला
0: होगा मे बी, क्योंकि जब वो पॉडकास्ट रिलीज हुआ था तब उन्होंने नहीं खेला था, शाहरुख खान ने इन्वाइट किया था, तो मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, फिंगर्स क्रॉस्ड है, शाहरुख भाई प्लीज भाई एक बार बुला लो मन्नत में, फीफा खेलेंगे।
1: हैव यू हर्ड सिद्धांत चतुर्वेदी का स्टोरी अबाउट शाहरुख प्लेस?
0: नहीं नहीं बताइए प्लीज।
1: सो आई थिंक पहली मूवी आई थी और ही वाज नॉट दैट फेमस एट दैट टाइम,
0: ओके,
1: एंड कहीं तो पार्टी करने गया था वो अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक द फ्रेंड्स जिनके साथ वो कॉलेज गए, नॉट द इंडस्ट्री फ्रेंड्स,
0: ओके,
1: और वहां पे शाहरुख को इंसिडेंटली वाज देयर,
0: वाओ, ओके,
1: एट दैट पार्टी, और पार्टी वाज गेटिंग ओवर, इट वाज अराउंड लाइक 2 और समथिंग इन द नाइट, एंड ही मेट शाहरुख, एंड शाहरुख जस्ट कैजुअली इनवाइटेड हिम कि कम ब्रिंग योर फ्रेंड्स, लेट्स प्ले सम गेम्स at my place,
2: और वो दोस्ती करनी पड़ेगी,
1: और वो अपने दोस्तों को लेकर वहां गया, एंड ही वाज लाइक फ्लैबरगास्टेड, क्या बोलू अब मैं, मुझे शाहरुख खान ने इनवाइट किया है अपने घर,
0: आपने फ्लैबरगास्टेड बोला, मुझे माइक का फिल्टर
2: वहां पर हो गया हमारा,
0: माइक का फिल्टर 3 बार धोना पड़ेगा अब, बोलो आगे बोलो।
1: But that was so sweet and that was his first impression of शाहरुख खान, and he was like जब हम उनके घर गए हमें बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि यू नो हम किसी इतने बड़े सेलिब्रिटी के घर आए हैं, and you know like you have to behave a certain way, no it was so relaxed and so chill and so warm,
0: जी जी जी,
1: और they spent the night there, मतलब जो बची कुची थी वही सोए भी वो,
0: wow,
2: जिस सोफे पे शाहरुख बैठते उसमें सोने का मौका मिला रहे हैं।
0: अरे आपको एक और किस्सा पता है, शाहरुख खान बता रहे थे, तो एक फैन जो है उस टाइम कुछ था, कुछ मीडिया के लिए उन्होंने ओपन कर रखा था मन्नत, तो लोग आ रहे थे, एंड वन गाय स्नेक्ड इन, और उसने स्विमिंग पूल में डुबकी लगाई और वो तैरने लगा, उसके बाद तैर के क्या कहते हैं उसने वहां पे जो रखा हुआ था टॉवल सब उस ये करके ड्रेस पहन के निकल रहा था, तब सिक्योरिटी ने उसे पकड़ा और उन्होंने बोला कि सर ऐसा ऐसा हुआ है, तो शाहरुख भी सोचा कि भाई ये कौन वियर्ड बंदा है, जरा इसे मिलना पड़ेगा करके शाहरुख गया, तो कह रहा है कि नहीं मिलना नहीं है मुझे उससे,
2: ज्यादा
0: फ्रैंक
2: फ्रैंक
0: मत हो, ठीक है,
2: मिलना मेरे को बस उस पानी में नहाना था जिसमें शाहरुख नहाते, देखो
1: वाह
0: ठीक है ये
1: बैड क्रेजी यार।
0: तो मतलब देखिए शाहरुख खान की लाइफ को अगर हम देखें ना, तो कहां दिल्ली में सेंट कोलंबस में पॉट, सेंट कोलंबस अगर आप लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, दिल्ली का टॉप टियर जो स्कूल का अगर हम लिस्ट निकाले ना उनमें से एक आता है, क्रीम जो क्राउड होता है दिल्ली का वहां पे वैसे लोग पढ़ते हैं, उसके बाद वहां से फिर वो गए BU में, हंसराज में पढ़े, मैं भी हंसराज में गया था ECA ट्रायल्स का वो देने के लिए, फॉर्म देने के लिए, बट उन्होंने लिया नहीं तो मैं वापस आ गया। और बट एनीवे द थिंग इज कि उनकी जर्नी अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि यार अपने सपनों पे भरोसा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने सपनों पे जब तक हम भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया नहीं भरोसा करेगी, और यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं, 2 स्टेट्स मूवी का गाना सुनते हैं और कहते हैं जियो
1: बिंदास।

0: माँ मुझे छोटे एड ब्रेक्स दिखाई दे रहे हैं माँ।
1: ऑल एफ शॉर्ट ब्रेक।
0: हेलो जादू
2: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
2: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
3: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
4: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।
5: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
6: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। These smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और मेरे साथ स्टूडियो में यहां पे बैठी हैं कशिश मैडम। क्या हाल है?
1: मैं तो बढ़िया हूँ गाइस, हमने बात करी अभी थोड़ी देर पहले।
0: yes,
1: आपको पता है मेरे हाल।
0: फिर भी पूछ रहा हूँ मैं, क्या जा रहा है?
1: मैं बढ़िया हूँ गाइस, बस आपकी शक्ल देख ली और इस दुनिया में क्या रखा है आपके इस चमकते हुए चेहरे के सिवा।
0: क्या बात कर दी, क्या तनीषा का चेहरा रखा है?
1: वो उसकी तो बात ही नहीं करूँ, उससे आपको कम्पेयर करूंगी मैं।
0: सूरज और चांद को कम्पेयर करोगे आप?
1: एक्सक्यूज मी,
0: हाँ मैं सूरज, वो चांद
1: नहीं, वो हमारी दुनिया है। ठीक है,
0: तो दुनिया में सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो दुनिया
1: सूरज
0: है।
1: एक स्टार है, हाँ। और चांद एक सैटेलाइट है, ओके, और ये सब जिसमें एग्जिस्ट करता है वो है तनीषा।
0: गैलेक्सी,
1: या
0: सोलर सिस्टम,
1: या
0: यू नो क्या,
1: एवरीथिंग
0: इज तनीषा,
1: सब कुछ। या
0: वाह तनीषा, भाई मतलब तनीषा सोच रही होगी कि भाई मेरे बॉयफ्रेंड ने भी कभी ऐसा नहीं बोला होगा मेरे लिए। जो रह चुके होंगे उन्होंने तो सोचा भी नहीं होगा इन सब चीजों के बारे में। बट एनीवे कशिश मैडम, क्या हाल है? सब बढ़िया चल रहा है?
1: सब बढ़िया चल रहा है।
0: और बताइए आज शो में क्या क्या करने का इरादा है?
1: शो में हम थोड़ी सी क्रिकेट की बात करेंगे, बहुत सारी फैशन।
0: क्रिकेट से याद आया कि यार इंडिया बहुत बढ़िया खेल रही है, हार गए इंग्लैंड से।
1: तो यार एक बात बताओ, आप किसकी तरफ से खेल रहे हो? आप क्या है, आप क्या सिर्फ आप कंटेंट की तरफ से हो क्या?
0: देखिए मैं तो कंटेंट की तरफ से आज, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगा। एनीवे सी, इवन इन दिस टाइम आई डू सपोर्ट द टीम, बट आई फेल्ट यार आयरलैंड से हारने के बाद थोड़ा सा एक वो रहता है, एंड आई थॉट इंडिया माइट यू नो मेक अ कमबैक।
1: ठीक है यार, अब इतने टाइम से जीत रहे थे, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे नजर के लिए थोड़ा सा हारना भी जरूरी है।
0: बिल्कुल सही कहा,
1: थोड़ा सा हारो और फिर ज्यादा बड़ा जीतो।
0: जी ओ क्या बात, इतनी छोटी उम्र में बड़ी गहरी बात कर लेते हो आप बार बार।
1: बार बार छोटी उम्र कहते रहो, मुझे मजा आ जाता है देखो,
0: है ना, है ना। इसी बात में 500 रियाल निकाल के टेबल पे रख दो, प्ले करते हैं गाना प्ले करते हैं, मैं भी निकलता हूँ और टाटा बाय बाय करता हूँ। मिलते हैं हम कल सुबह 6 बजे। टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: मेरे छोटे एड्रिक्स आएंगे
1: आएंगे नहीं आ गए
2: Olive Short Break. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की
2: तो फिर सोचना क्या अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो आज ही शुरू करो सेविंग्स कमर्शियल बैंक सेव And win.
4: This hour is brought to you by
5: Homes R Us. We complete your home.

एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, अलका याग्निक और कुमार सानू जी की आवाज में ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑलिफ पर। मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ, यानी यहाँ पर हम बातचीत जो है वो अपनी अब शुरू करने वाले हैं। आज का मौज मस्ती का जो प्लान है वो मैं पूरा बनाकर अपने घर से लेकर आई हूँ, तो उसी प्लान को फॉलो करेंगे। और बीच में अगर आपको कुछ ऐड करना है तो 3311063 पर आकर आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपके जो प्लान है उसको भी इंक्लूड कर लेंगे। आप में और हम में क्या अलग। वैसे देखिए आज मैं बता देती हूँ, एक छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ कि किन किन चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। सो एक बहुत ही अमेजिंग लीग से हटके मूवी जो है वो मैं आपको रिकमेंड करने वाली हूँ। थोड़ी सी क्रिकेट की बात करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे हम फैशन की, एंड बहुत सारी बात करेंगे हम बॉलीवुड की, और जो है आपसे जुड़ी हुई यानी आपके ओपिनियन से जुड़ी हुई भी कुछ बातें करने वाले हैं। सो बस आपको स्टे ट्यून्ड रहना है 106.3 रेडियो ऑलिव पर, और अमेजिंग वाले गानों के साथ साथ मेरी जो बकबक है उसे इंजॉय करते रहना है। फिलहाल नान सामी जी की आवाज में लिपस्टिक लगा के गाना जो है आ रहा है आपके रेडियो सेट पर। मैं भी जरा लिपस्टिक लगा के आती हूँ, एक अलग वाइब, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है लिपस्टिक लगाने के बाद। सो ये गाना आप एंजॉय कीजिए, मैं जरा लिपस्टिक लगा के आती हूँ, फिर बातचीत जारी रखेंगे, मौसम का हाल बताऊंगी मैं आकर। स्टे ट्यून्ड रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3
1: FM. Time check. Brought to you by Nanatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Al Khor.
2: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो गया. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 10:12 यानी 10:12. स्टे ट्यून रही जियो बिंदास.
3: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
4: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
3: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन.
4: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
3: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन.
5: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
6: Hi, this is Amitabh Bachchan and you're listening to...

0: जुबिन नौटियाल का ये गाना था बैड्स ऑफ बॉलीवुड मूवी से। आपने देखी है नहीं देखी? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड को अगर आप क्लोजली जानते हो तो ये मूवी आपको थोड़ी एक्स्ट्रा समझ आई होगी। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए जो है ले आई हूँ लाइफ मस्त है। अब देखिए लाइफ तो मस्त होती है लेकिन बस मौसम जो है वो कभी कभी नॉट सो मस्त वाला हो जाता है। जब इतनी ज्यादा एपिक गर्मी पड़ने लग जाए तो फिर क्या कहा जा सकता है। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, हमारे पास तो एसी है ना, ऑफिस में तो हमें ठंड लगती है। आप मानोगे नहीं, आज मैं ब्लैक कलर का फुल स्लीव्स का टॉप पहन कर आई हूँ क्योंकि मुझे ऑफिस में बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। देखो ऑफिस में ठंड रहती है, बाहर जाओ कैब में ठंड रहती है, किसी मॉल में चले जाओ वहां ठंड रहती है, यहाँ तक कि पार्क में भी ठंड रहती है क्योंकि एसी चल रहा होता है। सो गर्मी जो है वो है लेकिन एसी भी है, कोई बात नहीं। खैर टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। दोहा में इस वक्त का टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। मुझे ये बिल्कुल याद नहीं है कि लास्ट टाइम मैंने मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री या 29 डिग्री कब बताया था। ठीक है, सो 41 डिग्री सेल्सियस आज का अभी का करंट टेम्परेचर हो रहा है। आज का मैक्सिमम टेम्परेचर यानी हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो 45 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है और आज का लोएस्ट टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। बताओ मैं कहाँ बात कर रही थी कि कब मैंने आखिरी बार 29 को हाईएस्ट बोला था। कोई बात नहीं गाइस, मौसम बदलता है, किस्मत बदलती है, उस पर भी बात करेंगे। किस्मत बदलने पर थोड़ी सी देर में, क्योंकि किसी की तो किस्मत जो है 3 बार बदली है। मैं किसकी बात कर रही हूँ आज, अब तक गेस कीजिए, मुझे बताइए 3311063। पर तब तक इस गर्मी को, इस हीट को बीच करने के लिए एकदम कूल वाली बीच आपके रेडियो सेट्स पर आ रही है। कूल सॉन्ग ऑफ द आवर आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इस गाने को एंजॉय कीजिए और बाकी आपकी कशिश के साथ बस कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है कूल सॉन्ग।

वीर ज़ारा का गाना यहाँ पर है और मैं भी यहीं पर हूँ. मैं यानी कौन? आपकी कसूस. वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिवर. मैं हूँ आपकी कसूस एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ. एंड देखिए लाइफ मस्त तो एक बॉलीवुड के सुपरस्टार की चल रही है. मतलब हम इसे इस एंगल से देख सकते हैं लेकिन इस दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं कि ये इंसान जो है ये लव लाइफ के बारे में अगर हम बात करें तो कितना अनलकी रहा है या आई डोंट नो क्या कहना चाहिए. लेकिन एज अ न्यूज़ मैं आपको बता देती हूँ, अपना ओपिनियन मैं ना ही दूँ तो बेहतर रहेगा. सो हम सबके फेवरेट मिस्टर परफेक्शनिस्ट जो हैं वो एक बार फिर से शादी कर रहे हैं. हाँ जी, 61 ईयर्स के जो है आमिर खान हो चुके हैं. आज यानी 5th of July संडे को एक अपनी ही कंपनी में जो काम करने वाली एक उनकी असिस्टेंट थी उनसे वो शादी कर रहे हैं. पिछले 25 साल से ये आपस में दोस्त हैं एंड आमिर खान के 60th बर्थडे पर इन्होंने डिस्क्लोज किया था कि दे आर डेटिंग बट नाउ दे आर गेटिंग मैरिड. सो मैं अगर आपको एक ब्रीफ दे दूँ कि दो शादियाँ ऑलरेडी आमिर खान की हो चुकी हैं, रीना दत्त जी से एंड किरण राव जी से. एंड 2021 में किरण राव से इनका डिवोर्स हुआ था एंड उसके बाद से स्पेक्यूलेशन जो है ये लग रही थी कि यार आमिर खान क्या तीसरी शादी करने वाले हैं. लेकिन फाइनली आज आमिर खान की तीसरी शादी है. एक इवेंट में आमिर खान ने ये बताया कि उनकी जो शादी है आज ये बहुत ही ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं होगी, एक बहुत इंटीमेट वेडिंग होने वाली है जिसमें सिर्फ फैमिली के बहुत क्लोज लोग रहने वाले हैं और फ्रेंड्स रहने वाले हैं. एंड मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट ये मूवीज़ में तो हैं लेकिन कहीं ना कहीं लव लाइफ में थोड़ा सा लैग कर जाते हैं. एंड एक पार्टनर जो है वो सबकी यार देखो बेसिक नीड होता है ना, सबको एक इंसान चाहिए जिसे वो अपना घर कह सकें. सो आमिर खान बस उसी घर की तलाश में जो है वो घूम रहे हैं. आज की खबर यही थी कि आज इनकी शादी है. अब देखते हैं कल इंस्टाग्राम पर जो फोटोज़ आएंगी तो वो कैसी दिखती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कल. सो अगर आपको जो है पहले फोटोज मिल जाए तो मुझे भेज देना 3311063 पर. फिलहाल एक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर अलका याग्निक जी और सोनू निगम जी की आवाज में रन मूवी से. सो ये गाना एंजॉय करके आओ, उसके बाद जरा स्ट्रेस को दूर भगाने का एक फनी तरीका जैसे मैं हर रोज बताती हूँ वो आज भी बताऊंगी. सो ये गाना एंजॉय करो और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जी बिंदास.

गाने का नाम लेटर टू हर। अब देखिए लेटर तो अभी बहुत पुराना हो जाएगा एंड आपको बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी, मैसेज लिख दो यार वही काफी है 3311 1063 पर। वेलकम बैक, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। अब देखिए यार, हर रोज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताती हूँ जिससे आप अपने यू नो स्ट्रेस को भगा सकते हैं, कोई ऐसा फनी चीज में अपने आप को इंगेज कर सकते हैं जिससे आपको यू नो अच्छा लगे, ठीक है। सो बेटर ये होगा कि आप, अगर आपके पास ऐसे आप किसी लोनलीनेस वाले स्ट्रेस से जो है वो जूझ रहे हैं कि यार मेरे पास तो कोई है ही नहीं, कोई मुझे सुनता ही नहीं है, सो आप अपने खुद के साथ जो है एक बोर्ड गेम खेल सकते हैं जहाँ पे दोनों तरफ से आप ही खेल रहे हो, यानी आप और आप कि ओपोनेंट में भी आप ही खेल रहे हो। सपोज अगर आप लूडो खेल रहे हो, चेस खेल रहे हो, ऊनो खेल रहे हो, सो वो दोनों ही आप खेल रहे हो एंड आपकी दो पर्सनैलिटीज जो है आपस में लूडो खेलते हुए बात कर रही हैं। सो इससे क्या होगा कि आपको खुद की कंपनी जो है वो इन्जॉय करने का मौका मिलेगा। एंड ये बात मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ कि यू नो कि मतलब आपको जो है कभी कभी एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए खुद से बात करनी जो है ज़रूरी होती है। तो बस इसी फ्रेश थॉट के साथ जो है ऑल फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आर आर आई के रेडियो सेट्स पर इस गाने को जो है इंजॉय कीजिए और बाकी फिर ऑल ऑफ अपडेट्स लेकर सुदैव आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर। सो स्टे ट्यून रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: लाइव अपडेट्स।
1: कल्चरल इंटीग्रेशन की टू आइडेंटिटी एंड ग्रोथ। दोहा हैज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम ए मॉडेस्ट गल्फ टाउन इनटू वन ऑफ द रीजन्स मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल मॉडर्न सिटीज, बट फॉर द मैन वाइडली रिगार्डेड एज कतर्स फर्स्ट प्रोफेशनल आर्किटेक्ट, इट्स रियल अचीवमेंट लाइज इन डूइंग सो विदाउट लूजिंग इट्स आइडेंटिटी। दोहा टुडे इज अ स्टेट ऑफ द आर्ट सिटी विद वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, येट इट हैज अ यूनिक आइडेंटिटी। इट इज नॉट जस्ट अनदर मेट्रोपॉलिटन सिटी। द कल्चरल इंटीग्रेशन हैज बीन वन ऑफ द हाईलाइट्स ऑफ द सिटी एंड इन अ कंटेम्प्ररी वे, सेड मिस्टर इब्राहिम मोहम्मद। He is the founder of one of the country's oldest, largest homegrown architectural firms. New dive site boosts Qatar's underwater tourism potential. The discovery of a new dive site 3 km south of GMC Reef adds momentum to Qatar's efforts to unlock the tourism potential of its underwater world, where shipwrecks, natural reefs and diverse marine life could position the country as one of the Arabian Gulf's leading diving destinations, according to a diving expert.

0: Trek. Brought to you by Nanata Bahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhol.
1: हाँ जी, तो आपको वक्त बताने का वक्त हो गया है. 11:09 हो रहे हैं इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में, यानी 11:09. स्टे ट्यून्ड रहिए जियो बिंदास.
2: Hi, this is AR Rahman.
3: AR Rahman.
2: Listen to my songs on 106.3 Radio Olive.
3: Jio Bindas.
4: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.

0: देखिए जी, ये जो आजा माहिया वाला रोमांस है ना, हमें लगता है कि ये सिर्फ मूवीज तक ही होता है या फिर सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स जो है वो इंस्टाग्राम पे ऐसा करके दिखाते हैं, लेकिन नहीं, अगर करने वाला हो तो वो जो है ऐसा प्यार जो है रियल लाइफ में भी करके दिखाता है। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त लेकर आ गई हूँ एंड मैं बात कर रही हूँ विकी कौशल जी की। हाँ जी, देखिए विकी कौशल कितने ऑब्सेस्ड है कैटरीना कैफ से, ये तो वो खुलकर बताते ही हैं सबको। एंड कैटरीना ने भी जो है रिसेंटली एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे विकी कौशल जब भी वो सैड होती हैं तो उन्हें मनाते हैं। सो विकी कौशल जब भी कैटरीना जो है वो स्माइल नहीं कर रही होती है या स्ट्रेस्ड होती है तो उनके लिए डांस करते हैं उनके गानों पर, यानी कैटरीना के जो बहुत फेमस गाने हैं उन पर विकी कौशल डांस करते हैं। एंड जब ये इंटरव्यू लिया जा रहा था तभी कैटरीना ने बताया था कि अभी रिसेंटली ही मैं हंसने रही थी एंड 45 मिनट्स तक विकी कौशल ने, यानी विकी ने मेरे लिए डांस किया था। ओ माय गॉड, यार देखो सुपरस्टार है वो इंसान, कितना बड़ा स्टार होकर भी अगर वो अपनी वाइफ के लिए परफॉर्म कर रहा है तो आप किस खेत के कद्दू हैं। सो आप बताइए, आपकी अगर पार्टनर आपसे रूठ जाती है तो आप उन्हें मनाने के लिए क्या करते हैं, किस हद तक जाते हैं? 3311063 ये नंबर है मेरा, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ऑडियो नोट भेज सकते हैं। बताइए मुझे कि किस तरीके से रूठे हुए पार्टनर को या सैड पार्टनर को आप चीयर अप करते हैं या उन्हें मनाते हैं। मैं हूँ आपकी कशिश, फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द आर आर आपके रेडियो सेट्स पर, इसे इंजॉय कीजिए, आकर आप सबके मैसेजेस पढ़ेंगे। 3311063 क्या हुआ, फिर मिस हो गया? 3311063 चलो चलो जल्दी जल्दी मैसेज कर दो और कूल सॉन्ग ऑफ द आर इंजॉय करके आओ।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

ये जो शाहरुख खान ने अपनी वाइफ के नाम पे गाना बनाया है गौरी गौरी गौरी गौरी गौरी गौरी, क्या आपको नहीं लगता ऐसा कुछ हो सकता है? वेलकम बैक 106.3 रेडियो आलिप पर, मैं हूँ आपकी कशिश। शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ मैं, लाइफ मस्त है। अब देखिए यार, कैसे नहीं हो सकता, गोरी गोरी की जगह गौरी गौरी भी हो सकता है। हो सकता है कि गौरी खान जो है वो शाहरुख खान से गुस्सा हो और इसीलिए शाहरुख खान ने ये गाना बना दिया उनको मनाने के लिए। हो सकता है, देखो बॉलीवुड में कुछ भी हो सकता है। जैसे थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि विकी कौशल हमेशा अपनी वाइफ कैटरीना कैफ को मनाने के लिए या फिर जब उनको सैड फील हो रहा होता है तब उनको अच्छा फील कराने के लिए उनके सामने कैटरीना के गानों पर ही डांस करते। एंड रिसेंटली इंटरव्यू में जब कैटरीना बता रही थी तो उन्होंने यही बताया कि पिछली रात को 45 मिनट्स विकी कौशल ने मेरे लिए डांस किया क्योंकि मैं सैड फील कर रही थी, लो फील कर रही थी। अब मैंने आपसे इतना ही पूछा था कि आप बताइए कि आप अपने पार्टनर को जो है बेटर फील कराने के लिए ऐसा क्या करते हैं। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, लेकिन सबसे पहले जो है अक्सर हमें मैसेज करने वाले यूसुफ खान जी जो है उनसे जान लेते हैं उन्होंने क्या कहा है। सो उन्होंने ये कहा है कि हम तो देखो बस काम करने में हेल्प करा देते हैं। मैं अग्री करती हूँ, देखो काम कराने में हेल्प कराना जो है ये तो सिर्फ सैड फील कराने पे नहीं, ये तो जनरली भी आपको करना चाहिए। वैसे सैड अक्सर फील भी इसीलिए हो जाता है क्योंकि हेल्प कराने के चक्कर में काफ़ी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। सो आप बताइए, आप अपने पार्टनर को जो है फील गुड कराने के लिए या फिर उन्हें हंसाने के लिए ऐसा क्या अलग करते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स करते हैं जो बाकी लोग नहीं करते। 3311063 पर आप मुझे बता सकते हैं। फिलहाल एक बहुत ही अमेजिंग हैपनिंग गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, कैटरीना कैफ का ये गाना है। सो इस गाने को इंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

मूवी का नाम हैप्पी एंडिंग। और देखिए अभी एंडिंग होने में थोड़ा और वक्त बचा है, अभी थोड़ी और देर जो है हमारी बातचीत जो है वो जारी रहेगी। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव्स, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त ले आई हूँ। एंड थोड़ी देर पहले हम ये डिस्कस कर रहे थे कि यार जिस तरीके से विकी कौशल कैटरीना को डांस करके मनाते हैं या सैड फील करने से जो है बाहर लेकर आते हैं, लो फील जब वो कर रही होती हैं तो उसे उन्हें एंटरटेन करते हैं, तो आप अपनी पार्टनर के लिए जो है क्या करते हैं? यूसुफ खान साहब ने बोला कि मैं तो उनकी काम में हेल्प करता हूँ। एंड इम्तियाज अली जी ने आज थोड़ा अलग मैसेज भेजा है, वो ये कह रहे हैं कि देखिए वैसे तो मेरी पार्टनर नहीं है लेकिन इतना मुझे पता है कि जब भी कुछ भी हो, मेरी गलती हो या ना हो, मैं तो देखो सॉरी बोल दूंगा। देखिए इम्तियाज अली जी, मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता है। सॉरी है वो कोई है ना, वो ग्लू नहीं है जिससे सब कुछ वापस चिपक जाएगा। ठीक है, तो और कोई अच्छा इंटरेस्टिंग तरीका अगर आप लोग बता सकते हैं तो बहुत बढ़िया होगा, वरना विकी कौशल वाला तरीका आप अपना सकते हैं। वैसे देखिए जब डैमेज थोड़ा बहुत होता है ना तो विकी कौशल वाला तरीका जो है वो काम आता है, वरना नहीं आता है। फिलहाल ऑल फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर आपके रेडियो सेट्स पर आने वाला है, सो इस गाने को आप इंजॉय कीजिएगा। एंड आने के बाद हम देखिए कुछ मेजर चीजों पर बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे कि फैशन में इस वक्त क्या चल रहा है, कौन सी ऐसी नई मूवी है जो आने वाली है, एंड उसके बाद आज कौन सा स्पेशल दिन है। देखिए संडे है, आई नो इंडिया में जो इस वक्त लोग छुट्टी मनाते हैं लेकिन आज हमारा वर्किंग डे है। आई नो कुछ लोगों का जो है वर्क वीक का पहला दिन भी है, सो उसी पर बात जो है हम करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड रहिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: presents CB 2026 Million Reals Dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो

0: स्पेंडिंग पर गारंटीड कूपन, और चौथा 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
1: वक्त के जंगल में खोया है एक बंजारा।

क्यों ना बिगड़ने दे कोई, बताओ यार क्यों ना बिगड़ने दे, बिगड़ने में जब मजा आ रहा है तो बिगड़ना देना चाहिए है ना। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड मोस्ट अवेटेड सेगमेंट जो मैंने खुद ही डिक्लेयर कर दिया है कि ये मोस्ट अवेटेड सेगमेंट है, क्योंकि मैं इसका वेट करती रहती हूँ। मैं जो है रात को सो नहीं पाती हूँ ये सोच के कि यार कल जाके मुझे फैशन पे बात करनी है, क्या बात करूंगी ये। सो आज जो है मैं फैशन की बात तो करने वाली हूँ, लेकिन ये जो फैशन है ये टेक्नोलॉजी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। सो ये बात तो हम सबको अच्छे से पता ही है कि अब ईयरपॉड्स की जगह जो है काफी सारे लोग वायर्ड हेडफोन्स जो है वो यूज कर रहे हैं। एंड अब ये एक न्यू एस्थेटिक है कि वायर्ड हेडफोन जो है आप अपने फोन में प्लग करके एंड लगा रहे हो एंड उस पर इंजॉय कर रहे हो। सो वायर्ड हेडफोन इज अ थिंग नाउ। लेकिन वायर्ड हेडफोन्स पे भी अब क्रोशे करना, यानी उसको थ्रेड से जो है उस पर चोटी जैसा बना देना एंड उसे मल्टी कलर के चार्म से डेकोरेट करना, ये इस वक्त काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है। इंस्टाग्राम पे सब लोग यही कर रहे हैं। सो अपने वायर्ड हेडफोन जो किसी एक मेजर कलर के होते हैं, ब्लैक या वाइट, उस पर लोग जो है अब अपने पसंद से डिज़ाइन कर रहे हैं, उस पर क्रोशे से आर्ट कर रहे हैं, फ्लावर्स बना रहे हैं, चार्म्स लगा रहे हैं। तो अगर आप लोग भी वो हैं जो वायर्ड हेडफोन यूज़ करते हैं, तो अब आप अपना जो वायर्ड हेडफोन्स है वो किस तरीके से डेकोरेट करने वाले हैं ये प्लीज़ मुझे ज़रूर से बताइएगा। वैसे अगर मेरी पर्सनली बात की जाए तो मैं तो नहीं कर सकती डेकोरेट, क्योंकि वायर्ड हेडफोन मेरे उलझ जाते हैं आपस में, तो अगर मैंने उन्हें डेकोरेट किया फिर तो वो और ज़्यादा उलझ जाएंगे, है ना। मुझे तो ऐसा ही लगता है। अब अगर कोई ऐसी टेक्निक आ जाए जिससे मैं डेकोरेट भी कर लूँ और वो डेकोरेट करने की वजह से उलझे ना, तो बात करेंगे हम। फिलहाल धीमे धीमे 2.0 तेजी से आपके रेडियो सेट्स पर आ रहा है, इस गाने को एंजॉय कीजिए। बाकी थोड़ी सी देर में आकर जो है हम एक नई मूवी की बात करने वाले हैं कि कौन सी एक नई मूवी है जिसकी तैयारियां जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। टोनी कक्कर का ये ट्रैक एंजॉय करो और कहते रहो जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: Brought to you by Nainital Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Al Khor.
2: So, वक्त हो गया है आपको वक्त बताने का। इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 12:12 यानी 12:12। स्टे ट्यून्ड रहिए जियो बिंदास।
0: ग्रो योर ब्रांड अक्रॉस कतर्स की ऑडियंसेस। कनेक्ट विद हिंदी लिसनर्स ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम, मलयालम ऑडियंसेस ऑन रेडियो सुनो 91.7 एफएम एंड अरबिक लिसनर्स ऑन तत्कार 107.4 एफएम। ऑन एयर विजिबिलिटी सपोर्टेड बाय परफॉर्मेंस ड्रिवन डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स। सिंपल, इफेक्टिव, इंटीग्रेटेड। कॉल 3009-1063 or 3082-1063।
3: Hi, मैं हूँ विवेक आनंद ओबरॉय। You're listening to Radio Olive, Jio Bindas.
4: Olive सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: देखिए अरिजीत सिंह जी भी जो अब मेरी तारीफ कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि मुझसे बेहतर, मतलब तुमसे बेहतर, तुमसे अच्छा कोई नहीं है, तो आप लोग क्यों जो है मान नहीं रहे हैं। 3311063 पर मैसेज करके आप लोग भी अगर मेरी एक दो तारीफें कर देंगी तो आपको क्या जाएगा यार, मेरा तो दिन बन जाएगा ना। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड मैंने जो है इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते एक खबर पे जो है मेरी नज़र पड़ गई एंड मैंने सोचा कि मैं ये वाली खबर आपको बता देती हूँ ताकि आप लोग पहले से क्या बोल रही हूँ मैं इतनी एक्साइटेड हो गई हूँ एक खबर बताने के लिए कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ। ओके सांस लेते हैं और फिर आपको बताते हैं। मैं ये बता रही थी आपको कि एक मूवी जो है उसकी शूटिंग शुरू हो गई है जिसके लिए काफ़ी सारे लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं। शाहिद कपूर एंड जानवी कपूर हमें पहली बार बड़ी स्क्रीन पे जो है साथ में दिखने वाले हैं, एक साइंस फिक्शन कॉमेडी रोमांटिक मूवी जो है उसके साथ। मूवी का नाम है अदला बदली और ये कॉन्सेप्ट जो है पहले साउथ में जो है ऑलरेडी बन चुका है लेकिन ये जो है अब बॉलीवुड में पहली बार बन रहा है एंड इस मूवी की जो शूटिंग है वो शुरू हो गई है। अब पहली बार हमें जो है शाहिद एंड जानवी साथ में देखने को मिलेंगे। रिलीज कब होगी मूवी, ये जब शूटिंग थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी तब हमें पता चलेगा। जल्दी इसकी टीजर ट्रेलर पोस्टर सब हमें देखने को मिलेगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। ये जो है किसी बहुत नए कॉन्सेप्ट पे नहीं है मूवी लेकिन बॉलीवुड में बन रही है एंड शाहिद है ऑफकोर्स स्क्रीन पे, तो कोई क्यों नहीं देखना चाहेगा। इस कूल सी खबर के बाद कूल सॉन्ग ऑफ द आवर तो बनता है। ये अमेजिंग वाला ट्रैक एंजॉय करके आओ, उसके बाद बात करेंगे कि आज कौन सा स्पेशल दिन है। स्टे ट्यून रहिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

अब तो देखो मैं ऐसा भी नहीं बोलती हूँ कि मैं ऐसी क्यों हूँ, क्योंकि मैं जैसी हूँ बहुत अच्छी हूँ, बस ऐसा मान के चलती हूँ, बाकी कोई माने या ना माने। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड आज बहुत ही स्पेशल वाला दिन है। हाँ जी, आज है वर्कहॉलिक्स डे, यानी वो लोग जो काम को जो है काम नहीं समझते हैं, काम को अपना जीवन समझते हैं। मतलब ये आते हैं मतलब ऑफिस खुलने से पहले एंड जाते हैं सबके जाने के बाद, मतलब बिल्कुल जैसे मम्मी करती है ना कि खाना सबके लिए बनाएंगी खाएंगी सबसे एंड में, बिल्कुल वैसे ही ये करते हैं। एंड वर्कहोलिक्स को जो है वीकेंड भी नहीं चाहिए होता है, और अगर आप इनको एक दिन से ज़्यादा की छुट्टी दे दो तो इनके पूरी बॉडी में ऐसे सरसराहट फरफराहट थरथराहट फरफराहट होने लग जाती है कि यार मुझे अब काम करना है, मुझसे बिना काम किए रहा ही नहीं जा रहा। इनकी डिक्शनरी में नो नाम का शब्द होता नहीं है, ये हर चीज़ पे यस कर देते हैं, और इनकी वजह से फिर ऑफिस में जितने लोग हैं उन सबको जो है सहना पड़ता है, क्योंकि ये लोग जो है इंसान से एग्जाम्पल बन जाते हैं। ये एग्जाम्पल बन जाते हैं कि यार वो देखो वो तो मना नहीं करता, वो मना नहीं करता, तुम ही मना करते रहते हो, देखो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है काम करने में, तुम्हें प्रॉब्लम है। तो बस ऐसे लोग आपके जीवन में भी होंगे। सो रेडियो ऑलिव डॉट क्यू ए पर जो है एक इंस्टाग्राम वाली रील हमने डाली हुई है, उस रील को आप जाकर अपने ऐसे वर्कहॉलिक दोस्त को फॉरवर्ड कर सकते हो। फिलहाल नैना गाना जो है वो आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इस गाने को एंजॉय करो और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास।

0: गाने का नाम था लकीरा और आप जो है 106.3 रेडियो आलिफ पर सुन रहे थे लाइफ मस्त है मेरे यानी आपकी कशिश के साथ। हां जी अब वक्त हो गया है मेरे यहाँ से जाने का, आपको टाटा बाय बाय कहने का, लेकिन जाते जाते मैं वही कहूंगी जो अक्सर कहती हूँ कि गाड़ी जो है धीरे धीरे हौले हौले चलाइएगा, खाना खाते रहिएगा, पानी पीते रहिएगा, हाइड्रेशन का क्योंकि ध्यान रखना है, सनस्क्रीन बिल्कुल लगाते रहिएगा और मुझे जो है याद करते रहिएगा। 3311063 ये व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर आप जब चाहें तब मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल जाते जाते आपको ऑल फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर जो है वो सुना रही हूँ मैं, सो स्टे ट्यून रहिए और आपकी कशिश के साथ रेडियो ऑलिव के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर Song of the Hour.
0: Ye gana. Ta-ta, bye-bye, take care, see you with us.

0: सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।

0: Olive, 106.3 FM, Gio Bindas. इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहाँ हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहाँ हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। फीफा की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ऑलिव
1: इन एसोसिएशन विद।
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
2: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर। Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Hi, I'm Divya Datta. And you're listening to Radio Olive, Gio Bindas.
4: I'm in number one, Radio Olive.
5: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian Radio Network.
6: Olive Music Marathon. Ek ghanta, non-stop, back-to-back gaane.

0: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
1: Olive Music Marathon. 1 ghanta, 1 ghanta. Non-stop back to back gaane.

0: जी मैं हाँ हरभजन मान तुसी सुन रहे हो कतर हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM जियो बिंदास
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।

गुड आफ्टरनून, नया हफ्ता, नए चांसेस और सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम. सो आई विल से नमस्ते. एक खूबसूरत से संडे आफ्टरनून में मैं हूं मुस्कान और आप सुन रहे हैं ऑल एवरी चार्ज, जहां अगले तीन घंटे हम सिर्फ म्यूजिक नहीं बल्कि पूरी एनर्जी को रिचार्ज करने वाले हैं. वैसे दुनिया का एक ऐसी कंट्री है जहां मैं बात करने वाली हूँ आज कि उसमें वीकेंड का आखिरी दिन कैसा होता है. लेकिन कतर में आज से एक नया वीक ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. दुनिया की बहुत सारी जगहों पर आज संडे है, सेलिब्रेशन चल रहा होगा. कल नए हफ्ते के लिए नए लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे, पर हमारे यहाँ पे ऑलरेडी आज स्टार्ट हो चुका है नया वीक. आज से नए वीक की शुरुआत तो हो गई है. सो नई मीटिंग्स, नए टारगेट्स, नए ईमेल्स और होपफुली नए अपॉर्चुनिटीज भी. और संडे ना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि संडे हमें एक चीज याद दिलाता है कि लाइफ हर हफ्ते हमें रीस्टार्ट का बटन देती है. हो सकता है पिछले वीक थोड़ा सा परफेक्ट ना रहा हो सकता है कोई प्लान कंप्लीट ना हुआ हो, लेकिन कैलेंडर कभी जज नहीं करता. वो बस एक नए पेज को आपको खोल के दे देता है. और शायद इसीलिए मुझे नए वीक पसंद आते हैं क्योंकि हर संडे या फिर मैं कहूँ कि कतर के हिसाब से जो नया वीक स्टार्ट होता है एक नई कहानी लिखने का ना मौका मिलता है. सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि इस हफ्ते आप एक कौन सी चीज़ है जो ज़रूर कंप्लीट करना चाहते हैं? कोई ऐसा टारगेट, कोई ऐसी प्रमोशन, कोई फिटनेस, कोई फैमिली टाइम, या सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रेस है जिसे कम करना चाहते हैं? सो व्हाट्सएप ऑफकोर्स सेम है 3311063. और चलिए इस नए हफ्ते की शुरुआत करते हैं पॉजिटिव एनर्जी के साथ. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल ऑफ स्टेट यून जियो बिंदास.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास
1: Fresh on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Danatal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3
4: जियो बिंदास।
5: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
6: This hour is brought to you by.
7: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।

0: यू नो हर मौसम की अपनी एक पर्सनालिटी होती है. कभी नोटिस किया है कि हर सीजन की अपनी एक पर्सनालिटी होती है. विंटर हमें बाहर लेकर आता है और रेन हमें नॉस्टैल्जिया बना देती है. और कतर का समर अगर मैं बात करूं तो हमें पेशेंस सिखाता है. कतर के मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग शुरू हो चुका है अल हका, जो समर का तीसरा फेज माना जाता है. अगले 13 दिन तक गर्मी और ज्यादा इंटेंस होने वाली है. डस्ट जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगी और इसी वजह से एक्सपर्ट्स बार बार हाइड्रेशन और आउटडोर प्लानिंग के एडवाइस देते हैं. लेकिन मुझे क्या लगता है ना, हर मौसम सिर्फ वेदर रिपोर्ट नहीं होता, लाइफस्टाइल भी बदलता है भाई. समर में हम टाइमिंग चेंज कर देते हैं, सुबह जल्दी निकलते हैं, शाम को देर तक बाहर रहते हैं और ठंडी जगहों की वैल्यू और ज्यादा समझ में आ जाती है. सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि कतर की समर का सबसे चैलेंजिंग पार्ट आपको क्या लगता है, हीट, ह्यूमिडिटी या डस्ट? या सबसे इम्पॉर्टेंट, आज पानी थोड़ा ज़्यादा ज़रूर पीजिएगा क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट है यार, क्योंकि इस मौसम में बॉडी को भी रिचार्ज की ज़रूरत है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM. ये है ऑलिव रिचार्ज और मुस्कान है आपके साथ. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है. Cool song.

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के

स्क्रीन से नहीं एक्सपीरियंस से बनती है ये तो हमें पता ही है। हमने बचपन में कभी कोई स्क्रीन नहीं देखी भाई, मतलब मुझे तो फोन भी 12th के बाद मिला था। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है ऑलिव रिचार्ज। आजकल कतर में हर तरफ ना समर कैंप्स का सीजन चल रहा है, फुटबॉल, बास्केटबॉल, जिमनास्टिक्स, टेनिस, आर्ट वर्कशॉप, किड्जेनिया और कितनी ही सारी एक्टिविटीज हैं जो आप आसपास देखोगे, आपके घर के पास जो मॉल्स हैं, जो एक्टिविटीज हैं, जो कैंप्स हैं वो लगे हुए हैं। और मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बचपन सिर्फ स्कूल की किताबों से नहीं बनता, एक्सपीरियंसेस से बनता है, दोस्तों से बनता है। सो सोचिए हमने अपने बचपन की कौन सी याद है जो आज भी यू नो हमें याद आती है। होमवर्क बिल्कुल नहीं, हमें याद रहता है समर वेकेशन, नए दोस्त, क्रिकेट, साइकिलिंग और ये वो दिन जब पहली बार किसी कॉम्पिटिशन में आपको मेडल मिला था। यू नो साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि बचपन जब स्पोर्ट्स और ग्रुप एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का टाइम मिलता है बचपन में बच्चों को, तो सिर्फ फिजिकल फिटनेस नहीं, कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है, कम्युनिकेशन बिल्ट होता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी डेवलप होती है। सो इसीलिए पेरेंट्स आजकल सिर्फ मार्क्स नहीं एक्सपीरियंस भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आपके घर में भी छोटे चैंपियंस हैं तो इस समर उन्हें सिर्फ मोबाइल मत दीजिए, एक नए एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करने दीजिए। और आपके बचपन की फेवरेट समर मेमोरी क्या है ये भी बताइएगा। 3311063 पर यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: बिंदास। इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस श्योर इन GCC। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
0: Olive Recharge Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas Olive
2: Recharge। This hour is brought to you by
3: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।

0: रेस किसी और से नहीं, खुद से होती है, ये तो हमें धीरे धीरे पता चल ही गया। एक इंटरेस्टिंग बात पता है आपको, हम जिम ज्वाइन करने से पहले शूज खरीद लेते हैं, फिटनेस वॉच खरीद लेते हैं, वाटर बॉटल खरीद लेते हैं, बस रनिंग शुरू नहीं करते। लेकिन दोहा फेस्टिवल सिटी की एक इनिशिएटिव मुझे काफ़ी पसंद आई है, सो आई थॉट क्यों ना आपको भी बताई जाए। 31 अगस्त तक हर फ्राइडे मॉर्निंग एक इंडोर 5 किलोमीटर रन और वॉक ऑर्गेनाइज की जा रही है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि ये कॉम्पिटिशन नहीं है, ये मूवमेंट है। कभी कभी फिटनेस का मतलब फास्टेस्ट होना तो बिल्कुल नहीं होता, बस कल से थोड़ा सा बेटर होना होता है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है ऑलिव रिचार्ज। सो रिसर्च कहती है कि सिर्फ 30 मिनट की वॉकिंग भी मूड को इम्प्रूव करती है, आपके हफ्ते भर के स्ट्रेस को कम करती है और क्रिएटिव थिंकिंग को भी बूस्ट करती है। मतलब वॉक सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, ब्रेन के लिए भी एक्सरसाइज है। तो आज का सवाल है कि आप मॉर्निंग वॉक प्रेफर करते हो या फिर इवनिंग वॉक। वैसे गर्मी यहाँ पर इतनी ज़्यादा है कि मुझे लगता है कि कोई भी आउटडोर इवनिंग या मॉर्निंग वॉक के लिए तो जा ही नहीं सकता, उसके लिए आपको इंडोर कोई स्पेस तो चाहिए। अगर अभी तक वॉक शुरू नहीं की है और आपको कोई इंडोर स्पेस नहीं मिला है तो शायद इस वीक एक छोटा सा स्टेप ही आपका बड़ा डिसीजन बन सकता है, क्योंकि हर मैराथन पहले एक कदम से ही शुरू होती है। देन नेक्स्ट फ्राइडे यू कैन ट्राई दिस। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान, स्टे ट्यून, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर
2: फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश ये गाना फ्रेश है,
1: फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स। कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।

0: लाइव अपडेट्स।
1: कल्चरल इंटीग्रेशन की टू आइडेंटिटी एंड ग्रोथ। दोहा हैज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ मॉडस्ट गल्फ टाउन इनटू वन ऑफ द रीजन्स मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल मॉडर्न सिटीज, बट फॉर द मैन वाइडली रिगार्डेड एज कतर्स फर्स्ट प्रोफेशनल आर्किटेक्ट, इट्स रियल अचीवमेंट लाइज इन डूइंग सो विदाउट लूजिंग इट्स आइडेंटिटी। दोहा टुडे इज अ स्टेट ऑफ द आर्ट सिटी विद वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, येट इट हैज अ यूनिक आइडेंटिटी। इट इज नॉट जस्ट अनदर मेट्रोपॉलिटन सिटी। द कल्चरल इंटीग्रेशन हैज बीन वन ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ द सिटी एंड इन अ कंटेम्पररी वे, सेड मिस्टर इब्राहिम मोहम्मद जदा। He is the founder of one of the country's oldest, largest homegrown architectural firms. New dive site boosts Qatar's underwater tourism potential. The discovery of a new dive site 3 km south of GMC Reef adds momentum to Qatar's efforts to unlock the tourism potential of its underwater world, where shipwrecks, natural reefs and diverse marine life could position the country as one of the Arabian Gulf's leading diving destinations, according to a diving expert.

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के

0: सो दिस इज द टाइम जब मेरा जो आलस होता है वो एकदम पीक पर होता है. लंच हम कर चुके होते हैं काफी देर पहले, 2 बजे से पहले मेरा लंच हो चुका होता है, लेकिन यहाँ पर आते आते मुझे ऐसा लगता है कि यार काश थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है ऑलिव रिचार्ज. आई एम श्योर आपको भी लंच के बाद ये तो फील आता ही होगा. सो अब थोड़ी देर एक ऐसी बात करते हैं जहाँ पर आपकी एनर्जी जो है वो एकदम पीक पर चली जाएगी, क्योंकि हम बात करें कल वाले मैच की, विच वॉज इंडिया वर्सेज इंग्लैंड. सो क्रिकेट सिर्फ बैट और बॉल का खेल तो है नहीं. सो यस्टरडे वॉज सेकेंड T20 जो मैच था इंडिया वर्सेज इंग्लैंड का, जिसमें रवि बिश्नोई T20 में सबसे महंगा ओवर डालने वाले थर्ड इंडियन बन गए हैं. उन्होंने अपनी पारी के 17th ओवर में 29 रन बनाए थे. मतलब बिश्नोई ने इस पूरे ओवर में, 6 बॉल होती हैं एक ओवर में, 2 साइड 9 बॉल डाली, और वहीं बैथल ने ओवर में 3 जो छक्के थे वो लगा दिए. सो T20 में इंडिया के लिए सबसे महंगा ओवर जो था वो शुभम दुबे ने डाला था. उन्होंने 2020 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 34 रन दिए थे. नाउ इट वॉज 29 रन्स. सो सब कल की बात कर रहे थे, और इस टॉप मोमेंट की अगर मैं कल के मैच की बात करूँ तो अभी वो बाकी है भाई, क्योंकि कल डेब्यू हुआ है 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का इन इंटरनेशनल T20. सपनों की कोई एज लिमिट नहीं होती ना, ये सुना होगा आपने. बस यही बात आज हम थोड़ी देर में करने वाले हैं. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव. मैं हूं मुस्कान और ये है ऑलिव रिचार्ज. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट.

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Fresh on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Serve with pride. Danatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souk Waqif Alkhol.
2: This hour is brought to you by.
3: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के

बैक यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है ऑलिव रिचार्ज. सो सपनों की कोई लिमिट नहीं होती. कभी कभी कोई मोमेंट यू नो स्कोर्ड नहीं होता या फिर स्कोर कार्ड से बड़ा नहीं होता, लेकिन ऐसा ही एक मोमेंट जो है वो कल देखने के लिए मिला था. सिर्फ 15 ईयर्स एंड 99 डेज उनकी एज है और इंडिया की कैप उनके हाथ में है. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट वैभव सूर्यवंशी. जब उन्हें डेब्यू कैप मिली उनकी आंखों में आंसू थे, मतलब स्टेडियम पे, ग्राउंड में, और ऑनेस्टली शायद पूरे देश की आंखों में भी थोड़ी सी खुशी के वाले आंसू तो थे. सो एक टीनेजर जो स्कूल यूनिफॉर्म की एज में नेशनल जर्सी पहन रहा हो, और इसी के साथ उन्होंने सचिन तेंदुलकर तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया. सचिन ने इंडिया के लिए जब डेब्यू किया था ही वॉज 16 ईयर्स 205 डेज ओल्ड. और रिकॉर्ड्स टूट जाते हैं लेकिन इंस्पिरेशन जो है वो बढ़ती चली जाती है. और मुझे लगता है कि ये स्टोरी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, ये स्टोरी है टैलेंट की, कि भाई आप अपनी किसी भी एज में कुछ भी कर सकते हैं. व्हेन आई वाज 15 इयर्स ओल्ड मुझे सच में नहीं पता था कि मेरे करियर में आगे क्या होने वाला है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या सीखना है. सो कभी कभी एज सिर्फ बर्थडे केक पर लिखा हुआ नंबर नहीं होता है, ड्रीम्स उससे बड़े होते हैं. सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि आपके हिसाब से सक्सेस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, टैलेंट, हार्डवर्क पर लिखा हुआ नंबर नहीं होता है, ड्रीम्स उससे बड़े होते हैं. सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि आपके हिसाब से सक्सेस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, टैलेंट, हार्डवर्क. 106.3 माय नंबर. You are listening radio Olive 106.3 FM aur ye hai Olive Recharge. Stay tuned, Jio Bindas. Rika Ustara Rika Starida Kukaru Rika Ustara Rika Starida Kukaru.

आप एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर हैं, तो अब अपनी स्किल्स को प्रूव करने का वक्त आ गया है। हासिल कीजिए एक ऑफिशियल कहरामा सर्टिफिकेशन, पाइए अपना लाइसेंस जो आपके लिए कतर में नए जॉब अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल देगा, एक ऐसे सर्टिफिकेट के साथ जो आपके ब्रिलियंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का कमिटमेंट शो करता है। इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए, अभी रजिस्टर कीजिए और बन जाइए अपने फील्ड के टॉप कॉन्ट्रैक्टर्स और टेक्नीशियंस में से एक। बस विजिट कीजिए कहरामा की वेबसाइट www.km.qa और खुद को रजिस्टर कीजिए। सर्टिफाइड बनिए, सर्टिफाइड के साथ बनिए।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के

चांस देती है, एक बहुत पुरानी लाइन है, सेकंड चांसेस सिर्फ कहानियों में मिलते हैं, जिंदगी में नहीं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आज रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आमिर खान अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जो है उनकी थर्ड मैरिज। और इसीलिए मुझे लगा कि भाई व्हाई नॉट लेट्स टॉक अबाउट दिस चांसेस। भाई सेकंड चांस की तो मैं बात ही नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ चांसेस की। सो, मुझे लगा कि भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आपसे बात करनी चाहिए। हम सबको लाइफ में कभी ना कभी नए चांसेस मिलते हैं, चाहे वो नई जॉब्स हैं, नई सिटी है, नई दोस्ती है, नए रिलेशनशिप्स हैं। क्वेश्चन सिर्फ इतना होता है कि क्या हम उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM। मैं हूं मुस्कान और शो का नाम यस ऑफ कोर्स ऑल ओवर रिचार्ज। आमिर खान की फिल्म भी शायद इसी वजह से इतनी रिलेटेबल होती है। थ्री इडियट्स ने सिखाया था कि सक्सेस का अपना एक अलग डेफिनेशन बनाओ। तारे जमीन पर ने बताया था कि हर बच्चा अलग होता है। दंगल ने प्रूव किया था कि सपने ना जेंडर नहीं देखते, और शायद रियल लाइफ में भी हमें वो ये सिखा रहे हैं कि कहानी कब तक खत्म नहीं होती, जब तक आप ना चाहो। सो आई विल से कि आमिर खान की कौन सी फिल्म ने आपको ये सोचने पर मजबूर किया है कि भाई लाइफ में आपको कभी भी चांसेस मिल सकते हैं। दंगल, पीके, तारे ज़मीन पर, थ्री इडियट्स, ऐसे बहुत सारी मूवीज़ हैं उनकी। बाय द वे, आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो 3311063 पर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।

देखो भाई, सैलरी कमाना तो एक स्किल है ही, लेकिन संभालना एक और डिफरेंट स्किल है। एक छोटा सा सवाल है आपसे, अगर कल सुबह किसी वजह से आपकी इनकम कुछ महीनों के लिए रुक जाए या लेट हो जाए, तो आप कितने दिन बिना टेंशन के अपनी लाइफ चला पाओगे? थोड़ा अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है, आई नो, लेकिन जरूरी भी है यार। आज AI का जमाना है, टेक्नोलॉजी हर महीने बदल रही है, जॉब्स बदल रही हैं, स्किल्स बदल रही हैं, और इसीलिए एक्सपर्ट्स के बार बार कहने के बाद भी आप अगर ये नहीं समझ रहे हो तो आपको सुनना चाहिए कि करियर बनाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन फाइनेंशियल फाउंडेशन बनाना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम ये ऑफ कोर्स ऑलिव रिचार्ज। हम इंश्योरेंस करवा लेते हैं फोन का, कार का, लेकिन अपनी इनकम का बैकअप कितने लोग बनाते हैं, ये सवाल जब पूछा जाता है तो लोग कहते हैं नहीं यार, EMI स्टार्ट हो जाती है, आपका लाइफस्टाइल बदल जाता है, यू हैव टू मेंटेन ऑल दैट थिंग्स, लेकिन आपके पास फिर भी फाइनेंशियल बैकअप होना चाहिए। प्लानर्स ये कहते हैं कि आइडियली हर इंसान के पास 3 से 6 महीने का एक्सपेंसेस, जो एनर्जी है, इमरजेंसी फंड जिसे हम कहते हैं, वो होना ही चाहिए, ताकि मतलब लाइफ में अगर कभी भी कोई सरप्राइज आ जाए, कोई प्लानिंग कुछ चेंज हो जाए या फिर कोई इमरजेंसी आ जाए, तो आपके पास एक पर्टिकुलर फंड होना चाहिए। पीस ऑफ माइंड भी यही कहता है। सो सैलरी आते ही सिर्फ शॉपिंग लिस्ट बनाना या अपने खर्चे, अपनी EMI निकालना सिर्फ सॉल्यूशन नहीं है। आई विल से कि आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट अलग करना पड़ेगा, जिसके लिए हो सकता है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लेकर आने पड़े, पर वो इंपॉर्टेंट है। अगर आज से सेविंग शुरू करनी है तो पहला गोल क्या होगा? इमरजेंसी फंड, वेकेशन या अपना घर? मैसेज करके बताओ 3311063 पर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो, बिंदास।

0: Hi, this is Kailash Kher, and you are listening to Qatar's first Hindi radio station, Radio Olive.
1: Is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के

0: सो कहा जाता है कि हर फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होती. वीकेंड खत्म हो गया है और मुझे याद है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने कोई ना कोई मूवी या सीरीज जरूर देखी होगी इस वीकेंड पे. और आज नया वीक जब स्टार्ट हुआ तो मुझे लगा यार आज इसके बारे में बात करना तो बनता है. सो फिल्म ने जिसने मेरा अटेंशन लिया है इस हफ्ते वो है प्रीतम एंड पेंट्रो. मतलब अगर मैं बात करूँ प्रीतम एंड पेंट्रो की तो यहाँ पर दोनों ही बहुत डिफरेंट लोग हैं लेकिन एक साथ काम करते हैं और ये देखने में बड़ा मजा आता है. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है यस ऑफ कोर्स ऑलिव रिचार्ज. सो इसकी सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है कि ये लाउड नहीं है, सिंपल है. जियो हॉटस्टार पर आपको ये 6 एपिसोड की सीरीज मिल जाएगी. वैसे इस हफ्ते बहुत सारी मूवी रिलीज हुई हैं, चाहे वो अल्फा हो या अदर मूवीज वगैरह. और साथ ही साथ मुझे लगा कि यार इस हफ्ते इतनी सारी मूवी आई हैं तो एक मूवी तो देखते हैं. सो मैंने ये सीरीज पिक की. दूसरी तरफ एक तरफ मतलब एक्सपीरियंस है और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी है. एक तरफ पुरानी सोच है और दूसरी तरफ नया जमाना. और कहानी इसी बैलेंस के बीच में चलती है. वैसे भी बेस्ट स्टोरीज वही होती हैं जहां दो जनरेशन एक दूसरे को समझने की कोशिश करती है. सो इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ. साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि मूवीज ना सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं देती, वो कभी कभी वो एम्पैथी भी बढ़ाती हैं. हम दूसरे इंसान की लाइफ को फील करना सीखते हैं. इसीलिए अगली बार मूवी देखिए तो सिर्फ एंडिंग मत देखिएगा, कैरेक्टर भी देखिएगा. सो आज का सवाल यह है कि वीकेंड पर आप OTT चूज करते हो या फिर थिएटर, और इस वीक आपने क्या देखा था, कौन सी मूवी देखी थी, जरूर बताइएगा 3311063 पर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, ये है ऑलिव रिचार्ज. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है. Cool song.

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
0: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063. Olive Recharge. Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindaas. Olive Recharge.
2: This hour is brought to you by.
3: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के.

सो लेट्स टॉक अबाउट दी हैप्पीनेस फॉर्मूला. सो खुश रहने का जो फॉर्मूला है ना, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है. आज मैं आपसे एक रिसर्च शेयर करती हूँ. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने दुनिया की सबसे लंबी हैप्पीनेस स्टडी में से एक स्टडी की है, जो 80 साल से भी ज़्यादा चली. और ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. और सवाल बहुत सिंपल है, इंसान को ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुश क्या रखता है? पैसे, सक्सेस, फेम? नहीं. रिसर्च का जवाब था गुड रिलेशनशिप्स. जिन लोगों के रिलेशनशिप्स स्ट्रांग होते हैं, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ, वो लोग जनरली ज़्यादा हेल्दी रहते हैं और इमोशनली भी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं. अब सोचिए, हम पूरी लाइफ बेटर हाउस के पीछे, बेटर फोन के पीछे, बेटर जॉब के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन कभी कभी एक अच्छी कॉन्वर्सेशन सबसे बड़ी लग्जरी होती है. सो आज ऑफिस से घर जाते वक्त एक काम करिएगा, किसी अपने को बिना किसी रीजन के कॉल कर लीजिएगा. आई नो कि ऑफिस से घर जाते हुए 15-20 मिनट टाइम मिलता है, सो यू कैन यूटिलाइज दैट टाइम. और बस बोलिए कि यार याद आ रही थी. हो सकता है कि उसका पूरा दिन बन जाए. सो आपके हिसाब से हैप्पीनेस का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? फैमिली, फ्रेंड्स, ट्रैवल या पीस ऑफ माइंड? बताइए मुझे 3311063 पर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव और ये है ऑलिव रिचार्ज. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. बिंदास। इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहाँ हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहाँ हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। फीफा की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ओलिव
1: इन एसोसिएशन विद।
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
2: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर।
3: लगा और हो जा रिचार्ज।
4: Olive Recharge, Radio Olive 106.3 FM पर Jio Bindaas।
3: Olive Recharge।
5: This hour is brought to you by।
6: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।

0: और दोस्तों आज का ऑलिव रिचार्ज यहीं तक था, लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ। एक गार्डनर से किसी ने पूछा कि आप रोज पौधों को पानी क्यों देते हो, एक दिन स्किप क्यों नहीं कर सकते? तो गार्डनर ने मुस्करा कर बोला, यार ग्रोथ एक दिन में नहीं होती, लेकिन एक दिन की लापरवाही उसे ज़रूर इफेक्ट कर सकती है। और मुझे लगता है कि लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही है, अच्छी आदतें, हेल्दी रिलेशनशिप, सेविंग्स, फिटनेस, ड्रीम्स, ये सब एक दिन में नहीं बनता, रोज थोड़ा थोड़ा वक्त देना पड़ता है। तो इस नए वीक में कोई बहुत बड़ा रिजोल्यूशन मत लीजिए, बस एक छोटी सी अच्छी आदत चूज कीजिए और उसे निभाइए, शायद साल के एंड तक वही आदत आपकी लाइफ बदल दे। मैं हूँ मुस्कान, सुन रहे थे आप रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर ऑलिव रिचार्ज। आज साथ देने के लिए दिल से शुक्रिया। सेफ ड्राइव कीजिए, पानी पीते रहिए और याद रखिए, सक्सेस सिर्फ डेस्टिनेशन से नहीं, वो रोज की छोटी छोटी डिसिप्लिन चॉइसेस से ही बनती है। सभी के लिए टेक केयर और मिलते हैं फिर अपने शो में, जहां पर मैं आपको और भी बहुत सारी नई नई चीजें बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो।

0: जी
1: आपको क्या चाहिए? लेकिन आप लोगों का प्यार इतना है कि आना ही पड़ेगा, चार घंटे

भाई साहब कल रात जो चांद कह रहा था ना, वो बहुत कुछ कह रहा था। चांद अलग लेवल पे आपको पता है कि हर बार खूबसूरत लगता है। कल क्रिसेंट टावर के बीच में चांद था, बिल्कुल बीचों बीच। ओ माई गॉड, मतलब ब्यूटी ऐसी कि बंदा देख के ऐसे ही कि भाई मैं बैठ के बस चांद को तकता ही रहूं और तकती ही रहूं, ऐसी वाली फील आ रही थी। क्योंकि सिमरन कौर आ चुकी है, जबरदस्त इवनिंग शुरू हो चुका है। आपका आज का दिन जो था वो कैसा रहा? हफ्ते का पहला दिन था, संडे था। सो जैसा भी आपका दिन रहा वो बताइए और आपके गुड इवनिंग वाले मैसेजेस मुझे भेज दीजिए 3311063 पर। सिमरन कौर आपके साथ जी, ओम विद्दास।

0: Hey, can I have your number?
1: Why not? लिखो 10, 20, 30.
0: अब पूरे कतर में यही गूंजेगा क्योंकि सफारी में स्टार्ट हो चुका है 10, 20, 30 June 29th से.
1: आपके डेली एसेंशियल्स, ग्रोसरीज, बेकरी एंड हॉट फूड से लेकर फुटवेयर, बैग्स, ट्रेंडी फैशन आइटम्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी तक सब कुछ मिलेगा बिल्कुल आपके बजट में.
0: शॉप कीजिए और मेगा लकी ड्रॉ के जरिए 30 बेस्ट ट्यून कार्स जीतने का सुनहरा मौका पाए. सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस दोहा कतर. Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: Hi Radio Olive 106.3 listeners, this is Ranveer Singh. Stay tuned.

0: आते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

पाटन जी, सबके सब बोल रहे प्यार कर, प्यार के बाद जो भसड़े होगी उससे कौन बजाएगा यार। फुटबॉल से प्यार कर, लोग पगलाए जा रहे हैं यार। मैं गिरी सोनियों की दादी की हाल चाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर थोड़े नाल। अब आप लोगों को पता है कि मुझे फुटबॉल देखना नहीं आता है, लेकिन मुझे कतर में रहते हुए फुटबॉल की वाइब जो है वो बहुत ज्यादा पसंद है। जब इतने सारे लोग इकट्ठे मिलकर मैच देख रहे होते हैं, जो वाइब क्रिएट होती है, जो हूटिंग होती है, जो शाउट करते हैं, जो तालियां बजती हैं, मजा आता है। गोल पे गोल हो रहा है, नहीं हो रहा है, अपनी टीम के लिए चीयर करते, वो वाइब मुझे बड़ी अच्छी लगती है। कल फाइनली मैंने 2 के 2 मैच जो थे वो बैक टू बैक देखे। मैंने शाम वाला 8 वाला भी देखा और उसके बाद 12 बजे वाला मैच जो था वो भी देखा। मजा आ गया। 2 मुझे उतना नहीं समझ लगता। हाँ ठीक है, पहले 3 गोल हो गए हैं, फिर 1 गोल हुआ लास्ट में जो दूसरा मैच था, है ना। सो मुझे उतना चीज समझ लगता है और बस बढ़िया लगता है। जो खेले वो जीते, जिसको जीतना है, बट वो जो वाइब थी वो डेफिनेटली मैंने एंजॉय की। आज की वाइब क्या होने वाली है, ब्राजील और नॉर्वे के बीच में आज का मैच जो है 11 बजे होने वाला है। सो या आप इस मैच को देखने वाले हैं, घर पे देखने वाले हैं, बाहर देखने वाले हैं, बता सकते हैं आप मुझे 3311063। उसके साथ साथ रकीब का ये गाना काफी अंडररेटेड है।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: A ring for the newly married, cute little bangle for the newborn.
2: अरे यार, holiday season is here और फिर वही gifting का tension. तो फिर मालबार gold and diamonds, golden summer के साथ buy a free cash vouchers on diamond and precious gem jewellery purchases. Plus, exchange your gold jewellery and upgrade to the latest designs without any loss. और सुनो, there's more. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
3: क्या आप एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर हैं? तो अब अपनी स्किल्स को प्रूफ करने का वक्त आ गया है. हासिल कीजिए एक ऑफिशियल कहरामा सर्टिफिकेशन. पाइए अपना लाइसेंस जो आपके लिए कतर में नए जॉब अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल देगा. एक ऐसे सर्टिफिकेट के साथ जो आपकी ब्रिलियंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का कमिटमेंट शो करता है. इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए. अभी रजिस्टर कीजिए और बन जाइए अपने फील्ड के टॉप कॉन्ट्रैक्टर्स और टेक्नीशियंस में से एक. बस विजिट कीजिए कहरामा की वेबसाइट www.km.qa और खुद को रजिस्टर कीजिए. सर्टिफाइड बनिए, सर्टिफाइड के साथ बनिए.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. गदर की नंबर वन आरजे सिमरन के
5: साथ जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
6: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

सही लगता है ना शाम के टाइम पे ही गाना, क्योंकि हर गाने का एक टाइम होता है और ये शाम के टाइम बड़ा प्यारा लगता है। स्टूडियो की तरह की हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन गौरी आपके साथ। 5:27 पचपन सेकंड स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं। एक नंबर गाना

आपको कुछ सिमिलर लग रहा है तो मुझे बताइएगा, ठीक है? ये वाला पान की दुकान एंड तुझको, ये जो गाना है कॉकटेल ट्यूसडे, चलो 3311063 पे आप मुझे भेज देना। सो मिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने देखो सब जगह ये न्यूज आ जाई हुई है, तो अगर आपने मिस कर दी है तो मैं, मेरा फर्ज बनता है कि आपको बताऊं। अगर आप अपना प्राइवेट कार्ड वगैरह जो है वो जो आपको लाइसेंस मिला हुआ है, अगर आप वो टैक्सी वगैरह के लिए यूज कर रहे हो तो आप जो है वो रूल तोड़ रहे हो, और जो रूल तोड़ेंगे आपको पता है कि उनके ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है। सो मेक श्योर कि आप सारे रूल्स को फॉलो करिए, और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने आप लोगों को बोला है, आपके जो प्राइवेट कार्स व्हीकल्स हैं उनको आप अपने तक ही यूज करिए, टैक्सी की तरह यूज नहीं करना है उसको, टैक्सी के लिए बना के उसको।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Gio Bindas. इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहाँ हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहाँ हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। फीफा की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ओलिव
1: इन एसोसिएशन विद।
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
2: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर।
3: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
4: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
5: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
4: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
5: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
6: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
7: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
8: आरजे सिमरन के साथ।
9: Zabardast evening, make you drive golden with.
10: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
11: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

वाइब सेट हो गई है यार। ये मेरे को ये या फिर आपके आसपास भी आप लोगों को ये ज्यादातर देख रहे हो कि बहुत सारे लोगों को कोल्ड जो है वो हुआ पड़ा है, किसी को खांसी हुई पड़ी है, ये वेदर का असर है या फिर ऐसे ऐसे ही हो रहा है? मुझे तो ऐसे ऐसे नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है ये सिर्फ वेदर की वजह से हो रहा है, क्योंकि मेरी नाक पिछले एक हफ्ते से बह रही है। वो अलग बात है कि मैं ध्यान अपना ज्यादा नहीं रख रही हूँ, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि प्रॉपर डॉक्टर के पास जो है वो जाना पड़ेगा। 5:47, 13 seconds स्टूडियो की घड़ी पे। और एक गाना ऐसा, भाई साहब एकदम फील आती है यार इस गाने में। और इस गाने को सुनते सुनते हर किसी के जहन में एक चेहरा बन जाता है जिसको वो ये गाना दिली दिल में डेडिकेट कर देता है ना। चलो ये गाना मैं आप लोगों को डेडिकेट जो है वो करूंगी। और एक चीज जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा डेडिकेटेडली लोग कर रहे हैं, वो है रॉक पेपर सीजर वाला ट्रेंड। इसमें क्या हो रहा है कि ठीक है ये आप खेल लो, लेकिन खेला पता कैसे जा रहा है कि खाने की बड़ी सी प्लेट रखी जाती है, उसमें रॉक पेपर सीजर करके लोग टर्न बाय टर्न जो है वो आके फटाफट बिना सांस लिए बिना चू किए खाना जो है वो खा रहे हैं। भाई साहब मतलब खाने के साथ मुझे लगता है कि इस तरह का मजाक जो है वो नहीं होना चाहिए। मुझे मिलियंस में व्यूज जो है वो लोगों को मिल रहे हैं, इसीलिए लोग बिना चबाए बिना सांस लिए खाना जो है वो खा रहे हैं। बट कभी कभी ये काफी ज्यादा आपकी हेल्थ के लिए खराब हो सकता है। रिसेंटली मैंने एक छोटे बच्चे वाला भी वीडियो देखा जिसमें छोटा बच्चा भी ढप ढप ढप करके खा रहा है। भाई मम्मियों को अलग ही मिल गया ये, बच्चे कैसे खाएंगे? चलो रॉक पेपर सीजर वाला गेम ही खेल लेते हैं। बट ट्रस्ट मी, मुझे देख के इसको बहुत ज्यादा ऐसे होता है कि यार कैसे खा रहे हैं ये, मतलब कुछ हो गया तो एक मिनट में अटक जाता है यार खाना। खैर आप लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना, ये दोनों शाहिद कपूर के गाने हैं, ये जो अभी प्ले हो रहा है और उससे पहले एक प्ले हुआ था। आई लव दिस ट्रैक यार। अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान की आवाज, काउंटडाउन शुरू करें 4, 3, 2, 1 एंड गो।

0: Radio Olive 106.3 FM Gio Bendaz. Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: जॉय अलुकास ब्रिंग्स यू द जॉय ऑफ समर. द कूलेस्ट डील्स ऑन ज्वेलरी परचेसेस फॉर दिस समर आर हियर. फ्री कैश वाउचर्स ऑन योर डायमंड ज्वेलरी परचेसेस. 3.99% ऑनवर्ड्स अश्योर्ड लोवेस्ट मेकिंग चार्जेस एंड 0% डिडक्शन ऑन ऑल गोल्ड एक्सचेंज एंड मच मोर ओनली एट जॉय अलुकास. प्लानिंग अ ट्रिप टू इंडिया, मेक इट इवन मोर रिवॉर्डिंग विद अप टू 15% सेविंग्स ऑन इंपोर्ट ड्यूटी ऑन ऑल ज्वेलरी परचेस्ड फ्रॉम जॉय अलुकास इन द जीसीसी. दीस एक्सक्लूसिव समर ऑफर्स आर वैलिड ओनली अंटिल 8th August. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. जॉय अलुकास, वर्ल्ड्स फेवरेट ज्वेलर.

0: उठो यार। मैं कह सुनियो कि दादी की हाल चाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर है आपके साथ। और मैंने आपको बोला था ना कि कोल्ड जो है वो पिछले एक हफ्ते से जान ही ले रखी है यार इसने, और आप लोगों ने रेमेडीज भेजनी चालू कर दी।
1: ये तो होगी चले चैनल के हिसाब से। अभी आपने कहा था कि मेरी नाक जो है पिछले एक हफ्ते से बह रही है, तो आपको बताऊँ एक साशे मिलता है जुशांदा।
0: हाँ जी,
1: रात को सोने के टाइम पे जना कावे में बना के, कावे में डाल के या पानी गर्म करके पानी में डाल के,
0: हाँ,
1: या चाय बना के कुछ भी, मतलब इस तरह हार्ड वाटर जो होते हैं उसमें डाल के,
0: हाँ,
1: जुशांदा वो पियेंगी, दो दफा पियेंगी, तीसरी दफा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको।
0: ठीक है जी, ये जुशांदा भी ट्राई कर लूंगी। ऐसी होम रेमेडीज बड़ी अच्छी लगती है। जब आपको कोई होम रेमेडी बताते है ना उसमें बड़ा अपनापन होता है यार।
2: जो भिड़ा तेरे नैनों से काका तो आशिक सरेंडर हुआ।
0: फिर
2: जे तू अखियां दे सामने नी रहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे।
0: सुंदरी रेडियो वाली गोर के दरी।

0: Bihar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे मलबार गोल्डन डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे
2: Fresh fish on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhol.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tatkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: This is Deepika Padukone.
5: Deepika Padukone.
4: Radio Olive 106.3.
6: I'm a number one. Radio Olive.
7: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.
8: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
9: आरजे सिमरन के साथ
10: Zabardast evening. Make you drive golden with.
11: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
12: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop. Just

वाला ट्रैक यार. ਜੀ ਮੈਗੇ ਜੀ ਸੋਣਿਓ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋ ਆ ਵੈਦਰ ਨੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो पहुंच गया था एंड अभी के लिए 38 डिग्री सेल्सियस है एंड ह्यूमिडिटी जो है वो 32% है. विंड जो है 11 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चल रही है. ऐसे रफ्तार से गर्मी जो है वो बढ़ेगी यार, तो बस हम लोगों को अपना ध्यान रखना है. ऐसी गर्मी में बस एक पल अगर आपने बाहर निकले ना तो टैन

0: ऑलिवर्ग इधर ये जी ओम विद्दास
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर
2: क्या बात है सर क्या पर ये बात है
3: कूल सॉन्ग

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। Hey, can I have your number?
1: Why not? लिखो 10, 20, 30।
0: अब पूरे कतर में यही गूंजेगा क्योंकि सफारी में स्टार्ट हो चुका है 10, 20, 30 June 29th से।
1: आपके डेली एसेंशियल्स, ग्रोसरीज, बेकरी एंड हॉट फूड से लेकर फुटवेयर, बैग्स, ट्रेंडी फैशन आइटम्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी तक सब कुछ मिलेगा बिल्कुल आपके बजट में।
0: शॉप कीजिए और मेगा लकी ड्रॉ के जरिए 30 बेस्ट ट्यून कार्स जीतने का सुनहरा मौका पाए। सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस दोहा कतर।
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
5: सिमरन के साथ।
6: Zabardast evening, make you drive golden with.
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: ring for the newly married? Cute little bangle for the newborn? अरे यार, holiday season is here और फिर वही gifting का tension. तो फिर मालबार gold and diamonds, golden summer के साथ buy a free cash vouchers on diamond and precious gem jewellery purchases. Plus, exchange your gold jewellery and upgrade to the latest designs without any loss. और सुनो, there's more. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन.
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. गदर की नंबर 1 आरजे
4: सिमरन के साथ.
5: Zabardast evening. Make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores. Where the world comes to shop. Just

0: ਸੁਣਿਓ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 6:51 ਸਟੂਡੀਓ ਕੀ ਖੜੀ ਪਿਓ ਚੁੱਕੇ ਹੈ
1: ਲਾਲ ਕਲਰ ਕੀ ਸਾੜੀ ਮੈਂ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਡੇਂਜਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ
0: ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ
2: ਰੇਡੀਓ ਓਲਿਵ ਪਰ ਵਾਟ ਅ ਵਾਇਰਲ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਆਰ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕੇ ਸਾਥ
1: वायरल ये बात है।
0: ये एम्पायर स्टेट टावर वाली न्यूज तो हम सबने सुनी ली है ना, अब एम्पायर स्टेट बिल्डिंग वाली राइट। तो इसमें क्या था कि आपको पता है कि ऊपर चढ़ के प्रपोज किया था एक दूसरे को। अब क्या है कि बिहार में, इंडिया बिहार में एक कपल ने सोचा कि भाई हम भी वायरल होते हैं और हम भी ऐसा कुछ क्रेजी जो है वो करते हैं। वो इलेक्ट्रिसिटी टावर पे चढ़ गए एक दूसरे को प्रपोज करने के लिए, लेकिन इससे पहले की प्रपोजल होता पुलिस आ गई। भाई साहब लोग ऐसी हरकतें क्यों करते, क्यों अपनी जान जो है वो जोखिम में डालते हैं। सो कृपया इस तरह की चीजें जो है वो ना दोहराएं। खामियाजा भुगतना पड़ेगा क्योंकि उनको भी भुगतना पड़ा, वो भी बचे नहीं है इस चीज से, बट मेक श्योर कि आप इस तरह की हरकतें ना करो यार।
2: Song of the Hour. Yeah, guys.

0: वो पाट दे तुड़ा।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
2: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल।

0: सुनियो कितना दिखी हलचल सत श्री अकाल सिमरन कौर आपके साथ 7:05:22
1: टाइम चेक Brought to you by Nanatal Pahar, the ultimate Katuri adventure. Souk Waqif Alkhor.
0: Ek ye Madhuri hai. Aur ek ye wali Madhuri thi. बिल्कुल बेटा फिल्म से ये गाना है. सो मैं आपको कुछ ना हर दिन मैं सोच रही हूँ कि किसी ना किसी फिल्म से जुड़ा हुआ एक ट्रिविया जरूर बताऊंगी ताकि आपको उसके फिल्म के बारे में उसके पीछे की कहानी जो है वो थोड़ी सी पता लगे. सो पहले इस फिल्म का नाम जो है वो बेटा जो है वो टाइटल नहीं रखा गया था, उसका नाम रखा गया था बड़ी बहू. और सोचा गया था कि यार इसमें ना श्रीदेवी जो है ना वो बेस्ट कर सकती है और जो किरदार है वो श्रीदेवी बेस्ट निभा सकती है. लेकिन उसके बाद जो था ये चांस मिला माधुरी दीक्षित को एंड माधुरी दीक्षित ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इसमें यू नो रोल किया, एक्टिंग की. और जब क्रिटिक्स ने फिल्म को देखा तो उन्होंने बोला भाई इसका टाइटल जो है बेटा से चेंज करके बेटी रख दो आप. सो या और भी एक इंटरेस्टिंग बात है जो कि मैं आपको बेटा फिल्म के बारे में वापस लौट के बताऊंगी. सुंदरी रेडियो ऑलिव करके दे रही जी बिंदास.

0: presents CB 2026 Million Reals Dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: हेलो, मैं हूँ नीना गुप्ता. आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3.
3: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क. रेडियो ओलिव
4: नंबर वन. इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
5: साथ जबरदस्त इवनिंग. मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
6: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
7: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

ट्रैक यार. तो बेटा फिल्म का गाना धक धक अब यू नो माधुरी दीक्षित का इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ था और इसमें माधुरी दीक्षित ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी जीता था. तो एम एफ हुसैन जो थे वो स्टेज पे जब उनका नाम अनाउंस करने वाले थे तो उन्होंने उनका नाम लेने से पहले बोल दिया धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित. सो यू नो अब माधुरी दीक्षित को धक धक गर्ल जो है वो भी बोला जाता है. अनिल कपूर की फिल्म जो थी माधुरी दीक्षित के साथ दिल जो थी वो काफी ज्यादा हिट हो गई थी और अनिल कपूर चाहते थे कि भाई ये फिल्म जो है ना मतलब दिल से भी ज्यादा हिट जो है वो होनी चाहिए. तो एक व्हील स्टंट था, जॉइंट व्हील स्टंट था, तो भाई उन्होंने बोला कि मैं खुद ही करने वाला हूं ये स्टंट. और माधुरी दीक्षित को इतना ज्यादा गुस्सा हुई अनिल कपूर के कि भाई तू इतना बड़ा रिस्क ले रहा है और जो रिस्क तू ले रहा है, जो स्टंट तू इसमें कर रहा है उसमें तेरा चेहरा भी नहीं दिख रहा है. और अनिल कपूर ने बोला था कि पहली बार उन्होंने माधुरी को जो था वो इतना ज्यादा गुस्से में देखा था. सो या ये फिल्म से जुड़ी हुई ये बातें मेरे लिए भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती देती खुद जब इसके बारे में पढ़ रही हूं तो काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है क्योंकि जब कोई फिल्म बनती है उसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज होती है जो कि सबको जानने में मजा आता है. तो हर दिन कोशिश करूंगी किसी ना किसी एक फिल्म के बारे में मैं आप

0: दे रही है रेडियो ओलिव को और दे रही है जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
2: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

0: करेंगे हम। मैं ये जी सुनियो कि दादी की हालचाल सत श्री अकाल सिमरन कौर है तोड़े नाल
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ।
0: बोलते बोलते छींक बीच में आ सकती है दोस्त, और आपकी और हमारी दोस्ती इतनी तो हम कंफर्टेबल हो चुकी है कि अगर मैं बोलते बोलते छींक दूं क्योंकि मैं बीमार हूं, है ना, तो आप बुरा नहीं मानेंगे। सो लाइफ में ना जब आपको बुरा लगे ना तो बुरा मान लेना चाहिए। कहते हैं ना कि जख्म ठीक हो जाने से हादसे नहीं भूला करते। रियलिटी चेक में आज इसी के बारे में बात करते हैं कि ठीक है किसी ने आपका दिल दुखाया, किसी ने आपके साथ गलत किया, है ना, कोई टाइम आने पर आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाया, है ना, वो टाइम धीरे धीरे टाइम के साथ जो है वो भूल जाते हो आप, है ना, बट नहीं मतलब वो जख्म जो है जो भूल जाती हैं चीजें, अपना दिल जो है वो भूल जाता है उन सारी चीजों को, बट वो जो इंसिडेंट है ना वो आपको कभी भी जब ट्रिगर करेगा कभी भी याद आएगा, वो चीज आप भूल नहीं सकते हो यार। मतलब कभी किसी के साथ कुछ भी हुआ तो आपको सेम चीजें जो है वो याद आ जाएंगी, या फिर कोई ज्यादा आपके साथ दोस्ती या प्यार का दिखावा करेगा तो आपको वो पुरानी चीजें जो है वो याद आ जाती है, है ना। सो जख्म जो कि आपको वो सिचुएशंस देती हैं, जो लोग देते हैं वो भर जाते हैं, लेकिन वो जो हादसे रहते हैं ना जिसकी वजह से ये जख्म मिले हैं वो कभी नहीं भूला करते। सो कभी भी किसी का दिल इतना मत दुखाना कि वो इस लेवल पे हो जाए कि उसको फर्क ही ना पड़े यार।

लोगों की वजह से ही बहुत सारे लोग प्यार, दोस्ती, इन सारी चीजों से तौबा करके बैठे हुए हैं, क्योंकि वो हाथ से ही नहीं भूल पा रहे हैं जो उनकी जिंदगी में उन लोगों ने किए हैं। सो थोड़ा सा ध्यान रखो यार, लोगों का नाजुक होते हैं यार। वापस दौड़ के नेम गेम खेलने वाली तैयार हो जाओ।

0: मैं हूँ सारिका
1: सारिका
0: आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3
2: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क

ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰ ਲਗਾਏ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ अपना नाम सुनना चाहते हैं अभी के अभी रेडियो पे तो आपको अपना नाम मुझे लिख के व्हाट्सएप करके भेजना होगा तभी मुझे पता लगेगा। सो मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 3311063। आराम आराम से भी बोल देती हूँ 3311063। बताओ आपका नाम, सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिख के भेजना है। अखिला चरण जी थैंक यू सो मच, यूसुफ जी थैंक यू सो मच, आयत जी थैंक यू सो मच, श्याम जी थैंक यू सो मच, वजीउल्ला जी थैंक यू सो मच, राहुल जी थैंक यू सो मच, शाहिद जी थैंक यू सो मच, अली आसिफ, कामरान अहमद जी, कुंवर जी पांडे, हुज़ैफा जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। क्विकली सिर्फ नाम लिख के भेजिए। वाकू जी थैंक यू सो मच, हमजा जी थैंक यू सो मच, सुमन जी थैंक यू सो मच, सज्जाद जी थैंक यू सो मच, इस्माइल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए, शैलेश जी शुक्रिया, जुल्फिकार जी का भी मैसेज आया है, मलिक जी का भी मैसेज आया है, शाहबाज आजमी जी का भी मैसेज आया, शाहबाज गुल जी, शहजाद आजमी जी है एंड शाहबाज गुल जी का मैसेज आया है, सौजन्या जी थैंक यू सो मच, तीरथ प्रसाद जी, अनवर हुसैन जी, वसीफ जी थैंक यू सो मच, जोया जी थैंक यू सो मच, इंतशार जी, असद खान जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। सिर्फ और सिर्फ नाम लिख के भेजो दोस्तों 3311063 पर। दोस्तों अभी थैंक यू मत लिखो यार। मोहम्मद यूसुफ खान जी थैंक यू सो मच, आयुष जी थैंक यू सो मच, दुर्बा जी थैंक यू सो मच, मुनीर हुसैन जी थैंक यू सो मच, फातिमा यूसुफ जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। क्विकली क्विकली नाम लिखे, फारा चांद जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, रहमान जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, कीर्ति थैंक यू सो मच, मेजर जी थैंक यू सो मच, खिजर हयात खान जी थैंक यू सो मच, असद खान जी थैंक यू सो मच, शाहबाज जी ऑलरेडी मैं आपका नाम जो है वो ले चुकी हूँ एंड दैट्स इट फॉर नाउ। जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिया अब आप थैंक यू लिख सकते हैं और थैंक यू के साथ साथ अपना फेवरेट वाला इमोजी बना के भेज दीजिए।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM बिंदास कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।

और ये गाना मेरे दिल के इतने करीब है, इतने करीब है कि कोई दुख दर्द नहीं है, लेकिन ये गाना पता नहीं क्यों यार, मतलब मजा आ जाता है इसको सुन के।

0: इस गाने के जोन से बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल है यार। मेरी भी आंखें हसीन लगती हैं लाइनर लगाने के बाद।
1: बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा।
0: एक नंबर गाने चल रहे हैं अब, एक नंबर एक गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ, एक चुटकी सॉन्ग।
2: रेडियो ऑलिव पर
3: एक चुटकी सॉन्ग, एक चुटकी सॉन्ग।
4: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
0: तो बताओ यार ये कौन सा गाना है? So, आपने प्लीज लिखिए मत, प्लीज मुझे लिखने वाले अभी आने शुरू हो गए लिखने वाले मैसेजेस, मत करो, वॉइस नोट भेजना है। हे सिमरन, अपना नाम बताइए, एकदम सिमरन कौर वाली एनर्जी के साथ। देखो यार मैं बीमार हूँ फिर भी मेरे में एनर्जी की कमी नहीं है यार, सो एनर्जी रखो। हे सिमरन अपना नाम बताओ और बताओ कौन सा गाना है ये। 3311063 पे मुझे व्हाट्सएप कर दो, एक बार और सुना रही हूँ।
5: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
6: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ
4: Zabardast evening. Make you drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop. Just

0: अच्छे से गाने सुनती हूँ, म्यूजिक के नशे हो जाते हैं यार। महंगे जी सुने कि हाल चाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर है तुम्हारे नाल और हम खेल रहे हैं
1: रेडियो ओलिव पर।
2: बहुत बढ़िया, बहुत
0: एक चुटकी सॉन्ग में ये चुटकी भर गाना जो आपको सुनाया था। चलो आप लोगों के जवाब सुनते हैं डार्लिंग।
3: हे सिमरन, आई एम दुर्बा और गाना है हौले हौले से हवा चलती है। यस,
0: क्या बात है यार, थैंक यू
4: जी। हेलो, हाय सिमरन, आई एम महबूब
0: जी।
4: ये गाना है अमर खान का, होले होले हो जाएगा प्यार, चलिया होले होले हो जाएगा प्यार, तो बाकी हो गया।
0: थैंक यू सो मच जी। और उसके साथ बहुत ही प्यारी आवाज है यार आप सबकी।
5: हाय, माय नेम इज मून एंड सॉन्ग इज होले होले एंड आई एम अ ह्यूज शाहरुख फैन, सो आई कांट मेक अ मिस्टेक हियर। थैंक यू सो मच।
0: हाय, हाउ स्वीट, आपका नाम मून है यार, सही है।
6: हाय सिमरन, हाउ आर यू?
0: आई एम गुड,
6: कैसे हो?
0: बहुत बढ़िया।
6: दिस इज वेस्ली फ्रॉम इंडिया। दिस सॉन्ग होले होले से हवा लगती है, होले होले से दवा लगती है।
0: जी बिल्कुल।
6: फिल्म नेम इज रब ने बनाई जोड़ी।
0: ओके, थैंक यू एजी, थैंक यू। बधाइयां मिठाइयां दे बहुत सारे पटाके फटे चक दीते यार तुसी सब ने, एकदम राइट आंसर कीता है। और ये गाना भी बहुत खूबसूरत है यार, अभिजीत सिंह। हो।

0: ब्यूटीफुल ट्रैक राइट जाने तू या जाने ना लेकिन एक चीज तो आप जानते हैं कि सिमरन कौर के यहाँ से गल्टी माने का टाइम आ गया है और ये एक बहुत ही अंडररेटेड गाना
1: मेरा हुआ महरम तेरा गम
0: डॉक्टर अरोड़ा करके कोई फिल्म भी आई थी वो मुझे नहीं पता लेकिन ये गाना बड़ा खूबसूरत है कल शाम को 5 बजे फिर से होती है आपसे मुलाकात जबरदस्त इवनिंग्स में टिल देन खाते पीते रहो ऐश करते रहो चेहरे पे बड़े वाली स्माइल रखो किसी का दिल मत दुखाना बी नाइस टू एवरीवन यार गुड नाइट जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू 100 किलो

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: This hour is brought to you by
2: Homes R Us. We complete your home.

0: चांदनी रातें।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास 106.3 FM।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: चांदनी